अपनी प्रेम कहानियाँ लता जी आपको सुनाएं। फिल्म मेरा गांव मेरा देश, फिल्म मेरा गांव मेरा देश से निकाले हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। आओ ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। आप जो चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत किया जा रहा। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, आओ इस तरह से लीजिए।

0: दादा दास है तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा आम।
1: ये वाक्य आपने सुने बड़े मियाँ दीवाने, जी हाँ ये शानदार गीत हम आपको सुनाए इस तरह से। चलिए अगला गीत नंबर हम पेश करने वाले हैं, इस तरह से देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

चौहान जी, रफ़ी साहब और लता जी फिल्म शंकर जय किशन में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ और आप सुन रहे हैं। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है।

बिट्टू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकाल कर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लंबा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है। तो लीजिए आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब आशा जी और कोरस, क्या ख्याल फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह क्या कव्वाली था। पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है

याद रहेगा, ये रंगीन ज़माना है याद रहेगा। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

तुम्हें एक प्यार करते हैं करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफ़ी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और हम पेश कर रहे हैं इस तरह से रफ़ी साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्दे दिल दर्दे जिगर रफ़ी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी और माई तू मुकेश द हार्टथ्रब ऑफ मिलियंस, एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं, नेकन तीन सस्तख 1960 का ये फिल्म और हम आपको सुनाए। चलिए एक गीत और चला रहे हैं, जी हाँ, और ये भी जाना पहचाना गीत है मुकेश जी का, जी हाँ, सुन लीजिए इस तरह से, जी नहीं, एवरग्रीन किशोर कुमार, क्षमा कीजिए। ग्रीन किशोर कुमार

0: एवरग्रीन किशोर कुमार जी, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये शानदार गीत जबकि आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर।
1: तो कहते हैं यारों, प्यार करना जो है वो सिर्फ नसीब वालों को मिलते ही, कि ना कोई किसी से दूर होता है और ना कोई किसी के करीब होता है, वो खुद ही चल कर आता है जो जिसको नसीब में होता है।

और आपकी आ जाने से बहुत कुछ हो जाता है हमारे यार। तो दोस्तों और आगे गीतों के बाहर प्रोग्राम हमारे चलते हैं कि कभी उदास हो जाओ, कभी उदास हो जाओ तो बताना मुझे, फिर से अपना दिल देने, फिर से अपना दिल देंगे तुम्हें खेलने के लिए। क्या हमारा दिल खिलौना है दोस्तों कि खेलेंगे, और तेरे साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरे हर मुस्कान से मिलने मुझे खुशी है, मुस्कुराता रहना इसी तरह हमेशा, क्यों तेरे ही मुस्कान में मेरी जान बसी है।

अच्छा भोसले किशोर कुमार कहाँ गया हुआ सीन है। फिल्म के नाम है ये वादा रहा। कौन कहता है ताजमहल बनाने के लिए, ताजमहल बनाने के लिए दौलत नहीं मिलती, ताजमहल बहाने के लिए दौलत नहीं मिलती, मगर मोहब्बत करने के लिए मुमताज नहीं मिलती। दोस्तों कि कहते हैं नजर चाहती है दीदार करना, दिल चाहता है प्यार करना, क्या बताऊं इस दिल का आलम, नसीब में लिखा है इंतजार ही करना।

और तुम्हारी नजरें क्यों खफा हो गई? कभी कभी नजर तो खफा हो जाते हैं कि मिले तो हजारों लोग थे जिंदगी में, मिले तो हजारों लोग थे जिंदगी में, पर वो सबसे अलग था जो किस्मत में नहीं था। ना रूठो, ना रूठना हमसे, हम मर जाएंगे। ना रूठना हमसे, हम मर जाएंगे, दिल के दुनिया तबाह कर जाएंगे। प्यार किया है हमने, कोई मजाक नहीं किया है, दिल के धड़कन तेरे नाम कर दी।

और जरा फिर से, और जरा फिर से कहना, और क्या कहना है हमारे यारो, आपको क्या कहना है, सोच मिलने चाहिए, दिल तो अपने आप ही मिल जाते हैं, तो शक ना कर मेरी जज्बातों पे, तेरे साथ ही जिंदगी मेरी खूबसूरत है, जितने इमायत है पानी की, मरते इंसान के लिए बस उतने ही मुझे तेरी तेरी जरूरत है।

और क्या आप भी कभी भूला है और कभी याद किया है, लेकिन गलती मत करना दोस्तों कि गलती उनकी नहीं, कसूरवार मेरी गरीबी थी। दोस्तों हम अपनी औकात भूल कर बड़े लोगों से दिल लगा बैठे, तो ये बात है कि कभी भूला कभी याद किया। तुम हो सुबह शाम की तरह, तुम हो सुबह शाम की तरह, तुम हो खुशियों की पैगाम की तरह। हमने कब भुलाया है आपको, तुम याद रहते हो मुझे मेरे नाम की तरह। तो किताबों में क्या है,

0: ये पर्दा हटा दो।
1: और दोस्तों, ये सब गीतों का महान प्रोग्राम यहाँ से हम चलाते हैं। है ये गीत जो है आपको जरूर सुनना चाहिए।
2: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 Max Touch। Check।

0: और लेके पहला पहला प्यार, और कौन के ये पहला पहला प्यार है हमारे यारो। और उसके बाद अभी हम और आगे अपना प्रोग्राम को आम की सुनाएंगे।
1: डॉट वन ओनली बे रेडियो फॉर होनी।

आँच में जाके पता चला है कि चोली के पीछे क्या होता है। चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी को उजला दिल होता है,

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई है वो, और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारे यार वो, और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बात, चोली के बात क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है?

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह, जहां पान नहीं सोना था।

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते, या गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस।

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और वो क्या है।

नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना। नींद में बहुत कुछ हो जाता है।

जब तक संसार शरीर का आश्रय सर्वथा नहीं मिट जाता, तब तक जीने की आशा, मरने का भय, करने का राग और पाने का लालच, ये चारों नहीं मिट सकता।

गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

माता पिता चरणम नमः विद्या प्रदायकम दीक्षम मंत्रम गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सुनने वालों के सेवा में मैं हूं आपका सेवक संजय। और आज के प्रोग्राम में मैं आपके साथ जुड़ गए हैं जो बीमार है भगवान से यही कामना रखते हैं कि ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और सभी दुखों से दूर रखे, यही प्रार्थना है मेरा। जिनका घर एक नया शिशु ने जन्म लिए है तो उनको बहुत बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें भी बहुत सा बधाई और शुभकामनाएं प्रस्तुत किया जाता है। और जहां अब तैयारी हो रहा है नौकरी की ओर जाने के लिए तो कहने के बाद ये हो जाता है कि आपका एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। और ये मत भूलना, गांधी जी ने क्या सुनाए थे कि ये मत सोच कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ।

तैयारी कर रहे हैं स्कूल के ओर बढ़ने के लिए, तो ये कहना चाहूँगा कि माँ सरस्वती को भूलना नहीं। और ये आप अवश्य जानते हैं कि ईश्वर का दिया सब निःशुल्क है। ईश्वर का दिया सब निःशुल्क है, सबसे बड़ा संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, और सबसे अच्छा सुरक्षा विश्वास, और सबसे बढ़िया दवा हंसी। तो आप हंसते भी रहना, क्योंकि कहा गया है सबसे बड़ा दुआ उसी को। सबसे अच्छा सुरक्षा, जिसे हम विश्वास से जानते हैं, और ये विश्वास कभी खोना नहीं, क्योंकि कहते हैं नीदरलैंड्स में ना कि फर्त्रोवन राक्य मार एन केर क्वाइट,

और कहा जाता है कि सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि को, क्योंकि सबसे अच्छा हथियार भी कहलाया जाता है और यह हथियार धैर्य है। तो धैर्य से काम करना, जो हमारे देश में आए हैं सफर कर लिए, तो उनको भी हार्दिक से स्वागत किया जाता है।

जो तनहाक में अगर आप आए हो तो जरूर देख के जाना बेनहॉफ फ्रेडस पैलेस। जिसे कहा जाता है सिंबल फॉर तनहाक द स्टैट फन फ्रेडा एन रेख। इसी प्रकार से दनहाख में कितने बसिन स्वार्थ खेद है।

ये सुंदर सा गीत सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो अपने नानी के अंतर्गत ये सुनाए, क्यों ना हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं।

ये सुंदर सा गीत जो बच्चे ने और जाकर के बच्चे के अंतर्गत रखा गया, सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। दोस्तों सुनने वालों, ये बात मत भूलना, हम रहते हैं हॉलैंड एक सुंदर देश में, पर अपना संस्कृति सभ्यता और भाषा को भूलना नहीं चाहिए। देखा जाए कि 150 साल से ज़्यादा हम सब भारत को छोड़कर के सूरीनाम गए और सूरीनाम से फिर हॉलैंड और भी कितने देशों में जा कर के हम सब बसे हुए हैं, पर अभी तक हमारा सभ्यता संस्कृति और भाषा में बदलाव नहीं आए हैं। तो क्यों ना एक और सुंदर सा गीत के ओर बढ़ते हैं।

0: आहा टमाटर बड़े मज़ेदार। दोस्तों ये गाना हम चुन चुन के रखे हुए है ताकि आप इस पे ध्यान दें कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या हम अपने बच्चों को हॉलैंड में रह कर के भी अपना भाषा को सिखा सकेंगे। कहा जाए कि यूट्यूब पे जब हम थोड़ा खोज करें तो बच्चों के लिए सुंदर सुंदर संदेश के रूप में और रखा हुआ है। बबली जी आज आप भी इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं और कुछ मैंने बच्चों के अंतर्गत में गाना चुन चुन के रखे हुए हैं, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है?
1: सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। बच्चों के गाने तो बहुत सारे हैं और जब हम बचपन में स्कूल जाना शुरू करते बच्चे प्ले स्कूल हिंदी में कहते प्ले स्कूल शिशु निकेतन स्कूल, तो वहाँ पर सबसे पहले एक गाना और सिखाया जाता है।
0: तो गाना का बोल क्या है?
1: मछली जल की रानी है।
0: सबसे पहले ये गीत सिखाया जाता है बच्चों के?
1: हाँ जी।
0: तो हम क्यों ना वही गीत की ओर बढ़ते हैं।

0: तो ये गीत सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाता है ना?
1: एक गीत और है चंदा मामा दूर के।
0: तो हम क्यों ना ये गीत जो सूरीनामो में भी सुबह में रेडियो पे भी चलाया जाता था, क्यों ना हम लोग यहाँ भी चलाते हैं और चंदा मामा दूर की।

0: जो सभी बच्चे के लिए ये सुंदर सा गीत बबली जी, ये गीत पे सुन करके आपको कुछ और संदेश रखना है?
1: हाँ जी, थोड़ा सा संदेश है। इन गीतों में हमें ये संदेश मिलता है कि जो अपने घर से दूर हैं, विदेशों में रहते हैं या अपने माँ बाप से दूर हैं, तो लिखने वाले ने धरती को माँ कह दिया और चंदा को मामा कह दिया, और जो बहनें दूर हैं वो चंदा को अपना भाई मानती हैं।
0: तो चंदा को अपना भाई मानती, देखा जाए कि इस पे जब हमारे जब शादी होता है ना,
1: हाँ जी,
0: तो शादी होता है तो भाई जो अपना बहन जब माढ़ों में ब्याह होता है तो अपना बहन के, और जब जा कर के पंडित हाथ पे हाथ धरवा करके और उस पे जल छोड़वाते हैं ना भाई से,
1: हाँ जी,
0: तो भाई वहाँ कहते हैं अपने बहन से कि जा, तेरा शादी आज हो रहा है, मैं इस बात पे ध्यान रखूँगा कि अगर आपके आगे में जा कर के बच्चे होंगे तो हम आपके बच्चों पे ध्यान देंगे, और बच्चा भी हो जाता है पर समय रुकता नहीं ना,
1: हाँ जी,
0: तो समय रुकता नहीं और बच्चे का भी एक दिन शादी होता है, तो वही भाई जो जा करके इमली घोटाता है, और इमली घोटाता है जब, तो यहाँ पर ये संदेश रखते हैं भाई कि मैंने आपसे ये वादा रखा था कि कहीं जा करके आपके बच्चे होंगे तो उनको हम ध्यान रखेंगे, और आज मैं इमली घोटा करके और यहाँ से अपना जो कर्तव्य रखे यहाँ से पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, इन बातों पे ध्यान देते हुए क्यों ना अभी मैं देख रहा हूँ आप भी कुछ और कहने वाले हैं।
1: हाँ जी जरूर, क्योंकि ना हर बात में मतलब छिपा है, उसका अर्थ है, तो इन बातों में भी एक गहरा अर्थ छिपा होता है जो हमें समझना चाहिए।
0: हाँ, कितना जो हम लोग अपना शायद परंपरा से आते हुए देखे हैं कि माढ़ो क्या है, मटकुरवा क्या है, मंडप क्या है, हम लोगों ने अभी मैं कार्यक्रम की शुरुआत में ये भी रखा था कि 150 साल से ज़्यादा हम लोगों ने भारत को छोड़ कर के सूरीनाम गए, सूरीनाम से हॉलैंड और भी देशों में गए हैं, पर अपना सभ्यता संस्कृति और भाषा को नहीं भूले हैं।
1: सही बात, और हर बात में एक गहराई छुपी है,
0: हर बात में एक गहराई छुपी है
1: कि उस रीति रिवाज का मतलब क्या है, अर्थ क्या है,
0: सही
1: जो हम लोगों को समझना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों सुनने वालों, हम लोगों ने इस पे भी ध्यान दे, क्योंकि देखा जाए कि जो हमारे पुरखों है, जैसे कि एक शुरुआत में मैंने भी ये गीत को चलाए जिसमें ये मंत्र का संदेश रखा गया कि नानी तेरी मोर को मोरनी ले गए।
1: हाँ जी,
0: तो ये गीत का जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, अभी तक नया फैशन उसे ना लिख पाए कोई,
1: नहीं नहीं।
0: अब देखा जाए ये चंदा मामा वाला भी अलग अलग लोग अपने आवाज में गाए हैं, म्यूजिक को बदल दिए, पर वो टेक्स्ट को नहीं बदल पाए।
1: नहीं नहीं नहीं, और देखो ना जो शब्द बने हैं, माँ और मामा कहते हैं तो दो माँ लग जाते हैं, क्यों माँ से भी बढ़कर मामा,
0: तो मामा लोग के भी कुछ कर्तव्य होते हैं कि अपना उस पे ध्यान दे कि भाई हमने अपना बहन के शादी में जब जा करके उनका कन्यादान हो रहा था तो जल को और छोड़े थे, और कुछ कर्तव्य आपने किए, पर शायद इस बात को नहीं जानते थे कि आप क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों हम एक और
1: वैसे ही मासी में भी माँ लगता है, तो वो भी माँ जैसी मासी
0: में भी माँ लगता है, माँ जैसे, क्यों ना एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं बबली जी।
1: जरूर।

0: मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत हम सुन के हमें भी कुछ ख्याल आता है कि देखा जाए हम इसी में लगे हुए शायद होते हैं, पर समय हमें छोड़ता नहीं है और एक दिन वो समय आता है जहां हम फॉरसॉकिंग सॉइस में पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी सब जो अपने जीवन में लगे रहे हम उसे छोड़ देते हैं और वहाँ बस यही होता है कि आज हमें जीना है। एक दिन और ऐसी प्रकार से पार होता है और हर एक दिन एक एक दिन के तरह आगे बढ़ते हैं, ना बबली जी?
1: तो संजय जी, आपके कहने का मतलब है कि वहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं, कोई जात पात का झगड़ा नहीं है।
0: जैसे कि बचपन में हम सब क्लास में बैठते हैं ना?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो क्लास में सभी बच्चे और एक साथ में मिल करके गाते हैं,
1: जरूर।
0: और इसी तरह से हमारे अवस्था जब आ जाता है तो हम भी वहाँ पर बैठ करके और सभी मिलजुल करके कोई भेदभाव नहीं रखते हुए और साथ में रहते हैं।
1: लेकिन जहाँ हम जाते हैं सब जगह इकट्ठे काम करते हैं, चाहे काम करने जाएं, चाहे स्कूल में पढ़ने जाएं, सब लोग इकट्ठे मिलते हैं वहाँ पर।

0: एक फिल्म जिसमें ललिता पवार ने काम किया ना,
1: हाँ जी,
0: और ये सुंदर सा संदेश जो बच्चे अपने दादी को मना रहे हैं,
1: और जो बच्चे बने हैं उसमें एक डेजी ईरानी है, डेजी ईरानी और वो फर्रा खान जो डांस डायरेक्टर है उनकी मौसी है,
0: उनकी मौसी। तो ये गीत को आगे बढ़ाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे काली तेरी चुट्टी है परांदा तेरा लाल नी फ्रॉम द मूवी बाहर आने तक। इसी फिल्म से हमने ये गीत पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। और जरा सा हम देखें, जी हाँ, लोग कहते हैं टाइम विल हील एवरीथिंग, लोग कहते हैं टाइम विल हील एवरीथिंग, गलत कहते हैं। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी नहीं भर सकता। तूतक तूतक तूतक तूतिया आई लव यू फ्रॉम द मूवी घर का चिराग।

अभी आप सुन रहे थे तू तक तू तक तू तक तूतिया, आई लव यू, और प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। मैंने तुझे देखा है कहीं पहले, याद आता नहीं है कब कहाँ। फ्रॉम द मूवी मीठा जहर से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। आपको सुनाने वाले हैं कंचन और नितिन मुकेश जी।

अभी आप सुन रहे थे मैंने तुझे देखा है कहीं पहले, नितिन मुकेश के साथ में कंचन जी आप सभी को सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी मीठा शहर से हमने पेश किए है सुन ले मेरी लैला, यानी फिल्म का नाम है सुन मेरे लैला, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ओ विकी आई लव यू।

अभी आप सुन रहे थे ओ विकी आई लव यू फ्रॉम द मूवी सुन मेरे लैला से हमने पेश किए हैं। क्या आसमान गिर जाएगा दो चार घूंट हम पी ले तो, फ्रॉम द मूवी मीठा जहर से हम पेश करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मीठा जहर से, क्या आसमान गिर जाएगा जो चार घूंट हम पी ले तो। एक बहुत सुंदर गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते और आपको सुनाने वाले हैं आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफ़ी जी। चलिए मिलकर सुनते हैं।
1: Thank you.

अभी आप सुन रहे थे पूछो ना यार क्या हुआ। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है बाबला और कंचन की आवाज़ में। बोलो बोलो कुछ तो बोलो।

0: बाबला और कंचन जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। बोलो बोलो कुछ तो बोलो। और दहिया मोरी लेले लेले नंदलाल भी आप सुन रहे थे। अपनी नेकियां छुपाना आपकी सोच का इम्तिहान है और दूसरों के गुनाह छुपाना आपके किरदार का इम्तिहान है। और ये गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी सनम तेरी कसम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, ख़ास करके उन सभी के वास्ते जिनका नाम निशा है। निशा
1: love you all.

अभी आप सुन रहे थे बोले चूड़ियाँ बोले कंगना फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम से हमने पेश किए हैं। जाने दिल में कब से है तू फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगे इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, सुनो हमसे अगर गिला हो तो माफ़ करना, हमसे अगर गिला हो तो माफ़ करना, तुमको याद ना कर पाए तो माफ़ करना, दिल से तो तुमको भूलेंगे नहीं, अगर ये धड़कन रुक जाए तो माफ़ करना।

फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगे, इसी फिल्म से हमने पेश की है जाने दिल में कब से है तू। उदित नारायण के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। एक सच्चा दिल सबके पास होता है, फिर क्यों नहीं सब पर विश्वास होता है। इंसान चाहे कितना भी सिंपल क्यों ना हो, वो किसी ना किसी के लिए ज़रूर खास होता है। दीवाना है देखो बेकरार हो, अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं। और अलका याग्निक के साथ में सोनू निगम और करीना कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम।

0: are you?
1: अभी आप सुन रहे थे दीवाना है देखो बेकरार हो from the movie कभी खुशी कभी हमसे हमने पेश किए हैं। एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते अलका याग्निक के साथ में कुमार सानू और उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं द टाइटल फ्रॉम द मूवी दिल है तुम्हारा।

अभी आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी दिल है तुम्हारा। अलका याग्निक के साथ में कुमार शानू और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे। इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, और गीत का बोल है कसम खा के कहो। अलका याग्निक

कसम खा के कहो, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक के साथ में कुमार शानू आपको सुनाने वाले थे। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू फिक्र में अपनी हंसी बर्बाद ना कर। मोहब्बत, मोहब्बत क्या होता है सुनने वालों, बताओ? नहीं बताने वाली, क्योंकि आप खुद सुन लीजिएगा। उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं।

आने से आए तेरे जाने से जाए, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी रन से हमने पेश किए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोग फ्री होते हैं तो देर तक सोते हैं और देर से अपने बिस्तर से निकलते हैं, तो चलिए उन लोगों के वास्ते ये गीत हम पेश करते हैं, तेरे संग सिंपल सी कॉफी क्यों ना हो जाए। फ्रॉम द मूवी जमीन से हम पेश करते हैं।

फ्रॉम द मूवी जमीन से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते तेरे संग एक सिंपल सी कॉफ़ी भी किक देती है। और जब आप लोग मुझे किक देते हैं ना तो मेरा दिल क्या होता है, डिंग डोंग डिंग डोलने लगता है। फ्रॉम द मूवी कुछ तो है इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए।

मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, क्या यही प्यार है फिल्म का नाम। अलका याग्निक और बाबू सुप्रियो मिलकर आपको सुनाने वाले हैं।

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजयंती नाथू का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नई मेहमान आने है, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पे विपद पड़ी है भगवान उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं, हम आपको हरी रह से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं, हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं। और भाई अनिल साजू को हम जन्मदिन बधाई पेश कर रहे हैं फाहोन क्रू की ओर से, जिनका जन्मदिन जो कल थे। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाली हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी।

सुनने वालों वाले जैसे आप लोगों को पता है कि आज पितृ दिवस है, तो सभी पिताओं को हम एक शुभ पितृ दिवस पेश कर रहे हैं, यानी फैन फादर डे।

आप बुलाए और मैं ना आऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुम मेरी आवाज़ लो मैं आ गया। लाज साहब है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं, जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में, फिल्म लाज साहेब से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं फ्रॉम द मूवी तुमसे अच्छा कौन है, लता जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी साहब आपको सुनाने वाले हैं। लोग अच्छा पढ़ने और लिखने वाले को काबिल समझते हैं, लोग अच्छा पढ़ने और लिखने वाले को अच्छा और काबिल समझते हैं, बल्कि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले।

अभी आप सुन रहे थे रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तुमसे अच्छा कौन है। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन से एक सपना सा जागा है। फ्रॉम द मूवी परवाना से हम पेश करते हैं और आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा जी। जो सबकी फ़िक्र करते हैं अक्सर उन्हीं की फ़िक्र करने वाला कोई नहीं होता।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म परवाना से हमने पेश की है, आशा भोसले जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे जिस दिन से मैंने तुमको देखा है। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी वक्त से है और गीत का बोल है, दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करे। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, मैं कहता हूँ खुदा पर भरोसा रखो बुरा वक्त ही नहीं आएगा।

आशा जी के साथ में महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले थे दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के दिल के सहारे आजा प्यार करे अभी आप सुन रहे थे। फ्रॉम द मूवी वक्त से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। कई दिन से मुझे गीत का बोल है और फ्रॉम द मूवी अखियों के झरोके से हम पेश करते हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं। समाना तो बातें ही करता है जमाना तो बातें ही करता है सामने भी और पीठ पीछे भी, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि किस बात को इग्नोर करना है और किस बात को दिल से लगा लेना है।

फ्रॉम द मूवी अखियों के झरोके से अभी आप सुन रहे थे। कई दिन से मुझे यूं ही सपनों में आवाज देता था, हर पल बुलाता था, अच्छा तो वो तुम हो। जाने जा ढूंढता फिर रहा, किशोर डा के साथ में आशा जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जवानी दीवानी। एक बात याद रखना, रंग रूप देखकर इंसान का अंदाजा मत लगाना, वफादार लोग अक्सर सादगी में ही मिलती हैं।

अभी आप सुन रहे थे जाने जा, ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। फ्रॉम द मूवी जवानी दीवानी से हमने पेश किए है किशोर डा के साथ में, आशा जी आपको सुनाने वाले थे। जहरीला इंसान है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते ओ हंसनी, किशोर डा आपको सुनाने वाले हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, किताब से सीखे तो नींद आती है, जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है।

किशोर डा की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ओ हंसनी फ्रॉम द मूवी जहरीला इंसान। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, किशोर डा आपको सुनाने वाले हैं। अगर गलत फहमी दूर ना की जाए तो वो नफ़रत में बदल जाती है।

अभी आप सुन रहे थे तुम आ गए हो, नूर आ गया है। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। लता जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी हीरा। पन्ना तलाश है एक ऐसे शख्स की जो आंखों में उस वक्त दर्द देख ले जब दुनिया हमसे कह रही हो, क्या यार तुम हमेशा हंसते ही रहते हो।

पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

अभी आप सुन रहे थे चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, और ये गीत हमने पेश किए हैं सभी पापा के लिए पितृ दिवस के उपलक्ष्य पर। मेरे डैडी जैसे कोई नहीं, चलिए ये गीत हम पेश करते हैं फाहुन क्रू के ओर से सभी पापा के वास्ते पितृ दिवस के उपलक्ष्य पर।

अभी आप सुन रहे थे मेरे डैडी जैसे सबके हो डैडी। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं, जबकि आज पितृ दिवस है तो पितृ दिवस के उपलक्ष्य पर ये सॉन्ग हम पेश करते हैं सभी पिताओं के लिए।

तुझको ना देखो तो जी घबराता है, फ्रॉम द मूवी जानवर से हमने पेश किए हैं। उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे। जबकि आज पितृ दिवस है तो सभी पापाओं के लिए एक शुभ पितृ दिवस हम पेश करते हैं फहोन क्रू के ओर से। और चलिए ये गीत हो जाए सभी पापा के वास्ते।

अभी आप सुन रहे थे पापा मेरे पापा कितने प्यारे प्यारे तुम, फ्रॉम द मूवी घर का चिराग से हमने पेश किए हैं सभी पापाओं के वास्ते, जबकि आज पितृ दिवस है तो ढेर सारे बधाइयाँ शुभकामना सभी बच्चे सभी पापाओं को दे रहे हैं। सुनने वालों, जैसा आप सभी को पता है कि आज पितृ दिवस है, तो फाहुन क्रू के ओर से सभी पापाओं को एक शुभ पितृ दिवस हम पेश करते हैं ये सुंदर सा गीत के साथ।

अकेले हम अकेले तुम अभी आप सुन रहे थे और ये सुंदर सा गीत हमने पेश किया है सभी पिताओं के वास्ते, जबकि आज पितृ दिवस है तो ढेर सारा बधाई और खुशियाँ पेश की जा रही है सभी पापा के लिए। वाहन गुरु की ओर से सभी पापा को ढेर सारे बधाई पेश की जा रही है ये सुंदर गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे मेरा आसमान है पापा। जबकि आज पितृ दिवस है तो ढेर सारी खुशियाँ और प्यार हम पेश करते हैं सभी पापाओं के लिए। फाहोन क्रू की ओर से सभी पापा को हैप्पी फादर्स डे हम कहते हैं। ओ पापा मेरे,

अभी आप सुन रहे थे ओ पापा मेरे, जबकि आज पितृ दिवस है तो सभी पापा के वास्ते हमने ये गीत चलाए हैं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और एक और सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं सभी पापा के वास्ते, जबकि आज पितृ दिवस है तो ढेर सारे बधाइयाँ पेश की जा रही है पापा के वास्ते।

अभी आप सुन रहे थे मेरे पापा। ये गीत हमने पेश किए हैं सभी पापा के वास्ते, जबकि आज पितृ दिवस है तो सभी पापा के वास्ते हमने ये गीत चलाए हैं फाहोन क्रू की ओर से। मेरे पापा, ये गीत हम पेश करते हैं सभी पापा के वास्ते, जबकि आज पितृ दिवस जो है तो ढेर सारे बधाइयाँ और शुभकामना पेश की जा रही है फाहोन क्रू की ओर से।

ये सुंदर सा गीत हमने पेश किए हैं सभी पापा के वास्ते, जबकि आज पितृ दिवस है तो ढेर सारे बधाइयाँ शुभकामना पेश की जा रही है सभी पापा के लिए। सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, मैं आशा है कि ये प्रोग्राम आप लोगों को ज़रूर पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारे प्यार भरी, राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस संडे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल नेक्स्ट टाइम। और जाते जाते मैं सभी पापा को शुभ पितृ दिवस पेश कर रही हूँ।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरिए नाम सत्यकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है, हमारा काम यही है, हमारे मोहब्बत भरी प्यार के पैगाम।

0: दोस्तों, हम तुरंत तुरंत और तुरंत चलते हैं वो है सूरीनाम के ओर। हमारे जनता, हमारे प्यारे प्यारे जनता, आप लोग जानो है जब से एनडीपी का रखेरिंग आयल है दोस्तों, जब से एनडीपी का रखेरिंग जैसे आयल है तो इक्रम कॉन्फ्रेंसिंग बारे में आप लोग जानो है जो चांद सतोखी ने बनाए थे अपने जमे पे कि लोग अपना जो जमीन है यानी लांटी जगह जो उसको मिला है वो खरीद सकते हैं लांटी से यानी एकन दोम बना सकते हैं। तो इसमें करीब 15,000 लोग अपना अपना जमीन को और यानी कि जाकर खौन कॉन्फ्रेंसी का एक दोम कर लिया, लेकिन जैसे ये नया रखेरिंग आयल है भाई खलैक ओके स्टॉप कर दी इसके अंदर मखेल मान लेट स्टेर कर नोक बेस्टमैन से जो मिनिस्टर हैगा खेबीबी का वो ये कह दिया है कि बोले कि जितना आदमी जगह पाई से बोले पैसों बोले सब लौटाड़े जो ऐखन दो में बोले वो फिर लांटी के हो जाएगा। तो एकर बारे में बहुत घीचा तानी भइल है। तो एंडलक तो का बोले है मिनिस्टर का बोले है फन खेबीबी के और वो बोले है बोले ना बोले कि बतिया ऐसे ना है बोले जो आदमी के रोंत हो चुकल है जेके एखन दोम कागज मिल चुकल है सगरो तीकन हो चुकल है बोले ओके हमें ना माखेगा तुरख द्राई करे बोले रखा नहीं बोले बाकी जोन के अभी तुरख द्राई ना भइल है और पैसा तू भर दे ले बाट मतलब कि जेकर अभी ना रोंत भइल है और तू पैसा भर दे ले बाटे का बोले है सेंट्रल बैंक में बोले ओकर पैसा बोले हम तुरख देबे जोन तो सखवा दोरो ना जाए। तो ई रखेरिंग एनडीपी और गैगरी रुसलांद के रखेरिंग हैगा और सब क्वालिटी जितना क्वालिटी के आदमी है ओमा पेयल है बेफर दुनिया भर के भैया है लखरूप है सब मिलजुल के ये सब काम करी इस वन क्वालिटी में खाली बपाल एनडीपी ना करे है सब कोई एकर बारे में एनडीपी के और नेक आंध्र पड़ता जो सामो वैर करे सब एकर बारे में देखो क्या हुआ है बड़ा जबर घेचा चानी हुए भैया। तो एगो नोतारे से जेकर नाम बा जयनंदन सिंह, नोतारे जयनंदन सिंह जो है वो एकर बार कार्लो जयनंदन सिंह एकर बारे में का बतावे तरी सुना जाए तो
1: versie. Maar daarvoor moesten er uitvoeringsbesluiten gemaakt worden. En dat duurde op een of andere manier erg lang. Was in 2009. Mm. En toen trad de regering Venetiaan af. Yeah. Is het in de ijskast gebleven. En in 2016. Mm-hmm. En dat weten velen niet. En terwijl het bekend moet zijn. Is de eerste grondconversie onder leiding van Hoefdraad. Dus yeah. De regering Boetboot. En het is niet dat ze tegen waren. Maar ze hadden hele hoge tarieven. Je betaalde 30, 40 euro ja. per vierkante meter. Satoki heeft een halve euro van gemaakt. Maar oké. Maar bijna niemand deed dat.
2: Ja.
1: En dat is dan weer opgenomen tijdens de regering Satoki. Brunswijk zei het dat Brunswijk ook niet wilde meewerken. Dus Satoki heeft dus op basis van een nieuwe grondconversie besluit.
2: Ja.
1: Maar gebaseerd op de wet. Dus het is helemaal conform. Dat garandeer ik hoor. Is dat gebeurd, die conversie.
2: Nee.
1: En als er eenmaal geconverteerd is. Volgens alle wettelijke regels. Kan je dat niet terugdraaien. Het werd...
0: Dus ये बातचीत है जो नोटारिस कार्लो जननन सिंह यहाँ पे बताए है कि ये जो वेत है ये बौथर्स के तेईस से भी सबन एन कर ले रहा फिनिशियान भी एन कर ले रहा बाकी उस सबके जो पैर फिरकांत मीटर रहा उस सबके प्राइस बहुत ऊंचा रहा बेना फिर तक यूरो पैर फिरकांत मीटर तो वो बेचत रहा और कोई ना की नहीं भैया उतना महंगा आदमी के पैसों भी चाहेंगे तो जब तो के जाए के खरों कॉन्फ्रेंसी से फिर तक एरो पैर फिर कांते मेहतर एगो जगह की ने घाईगा तो बेचने तू जा क्लार खमा के वो किले ना तो समय पे कोई ना किरत रहा लेकिन इचियुआ चल गए रहा फिनिशियान भी इन कर ले रहा उकर बांत में बौतस के रखेरिंग भी कर ले रहा और जो हुफ दरार भग गए आज वो मांगत रहा इतना में बेचे कहीं लग कोई ना करे तो संतोखी जली सेगा तो सस्ता में करे जो जनता के सीकर है इतरे अपन जमीनिया किन लेवे जे माँ वो रहे है तो अब जी ई रखे हुआ आयल थे एक के बंद कर दी से सोचे संतोखी के हैं और यहाँ जैसे जनरल सिंह बोले हैं बोले इतना चाहिए फोकस वेत काम भैल है इम्मा इक्को इली खाले वाला चीज के कारभार ना बैले जननन सिंह वर्त उगते दे रखे रिंग बहुते से खबर एक कमाक फाने से अलब दे मोकलक है ओम खरोत अप ते सेते ना एक दो में से बोले फर्सकेल वा इरा दे कोस्टन दे स्टेज नाम आन सिंगलक हुकर वास पास ओन दे प्रेसिडेंट से तो की वर्दन तरीफन फोर्स फला वार्दोर फील मेर बुर्कस आन आनफ्राग इंदिंदे And for the rest, is helemaal niet dat je Stanley, Suro Paviro, via grond en bosbeheer ke om gelden terug te betalen aan burgers. Bole een paiswa, bole terug, maar 15.000 admitoleetjukel he. Sinds de invoering van een goedkopere regeling hebben meer dan 15.000 personen een aanvraag ingediend. Jema 659,5 miljoen SRD staatskas mee eigen hem. Abbatia ie, via ie. चकल्लेस अब देखो जननन सिंह भी बोले हैं और हम भी बोलेला 300,000 से ज्यादा अने साक लड़े हैं कि भी अपरे के तो ओके कहां से पैसा रहेगा इस सब के भरे के भैया वो देखो जनन से कम कि भी ऑन द दोषे न्यू ऑल मैन आन सिंगल फाइनेंशियल फॉरप्लेटिंग है एट ऑफ ढोंग सोमन टेकन द Ondergrond vraagt hij zich af hoe de overheid denkt om te gaan met de belangen van de duizenden burgers die op basis van bestaande regelgevingen kosten hebben gemaakt en verwachting hebben gebouwd. Natuurlijk, het moet er kostencrisis. Op willen daarnaast wijzen op dat personen die wel een beschikking hebben ontvangen, maar nog geen eigendomstitel in handen hebben, juridisch gezien mogelijk nog steeds in aanmerking komen van de conversie zolang de beschikking geldig is. Daarmee lijkt het hoofdstuk rond de grondconversie voorlopig nog niet afgesloten. De itra dheer karja hai, matlab ki bhare kahega GBB ke, straks een strafrechtszaken en zo, aur umange admin ke paisa lautare, dat lijkt me heel erg sterk, maar ja, aur bappa, isab ke apre paisa na hai, aur usab mange, काबुल है सब खरों तो हम जाएले भैया जोन आदमी हंसू के बोट इधर उधर के बोट चलावे है मेर सोरख के लियोस बैरख के बोट जोड़ पा बोले पांच बरिस से उस सब के लांटी पैसे ना भरी से सब्सिडी ना भरी से लांटी भैया बोले द बोट बोनर्स हाउडर्स जोन बोले पांच बरिस से हम लोग के पैसा ना मिलल है जो लियोस बैरख के और का बोले कमवेन के बहुत हाउडर सेगा और बोले ना मेर ना पांच बड़े सब्सिडी पैसा बोले हम ना पहले उसे ऐस करे मंगर के कि जो अने मिनिस्टर है ते जी ते के रेमोन लानफेल फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के बोले है उसे के चाहे भरे के और एमा एनडीपी के पार्लियामेंटारी है अनसडी फोर सेटर हैगा यानी कि फी बेस दे के यानी कि ट्रांसपोर्ट के बुटियन के बोले सैन द बोथ होल्डर्स नी आंखसलोटन सैन बाय दिस वरेनिंग द मेस गोल्डुलका बोथ होल्डर्स इज नाम दिस ऑनलाइन वर्ड से केयर ऑफ केयर डिस्क्रिमिनेट व्हेन इट आनकम्स ऑफ द बेटालिंग सब्सिडी ते एनडीपी के डीएनआर बोले हैं और बोले पांच बरिस से बोले कि फरहुकिंग बेड फॉर रखेंगे एंड ही रोये सेंट आन सब्सिडी एंड यू से एन यार फेर्डर और बोले हैं मिनिस्टर खबेल्ट बोले बेल्कली हैं और बोले हैंगा सादी बोले हैं सोमवार के बखरुजिर महानदलिंग में कि सबके पैसा कब भराई कैसे भराएगा तो जनता Suriname is heel erg moeilijk, mensen. Ze hebben geen geld, net als de vorige jaren, en ze moeten alles gaan doen. Ampeloon Jano, jitra anmi jungle angel jaan, bolem jala muru kriki bhaiya, jitra anmi ya muru kriki is lakdi nikare, jitra anmi sona khode bhaiya muru kriki jungle binalant hai ga,

और छलकी न जाई गोलियां, छलकी न जाई, बोले धीरे धीरे चलो और घगरी छलक न जाए। तो दोस्तों हम चलते हैं यहाँ से और आगे को। अब देखो भैया, एगो लड़का, बड़ी दुख भरी कहानी है, कहानी ना समाचार है दोस्तों। एक बरिश के लड़का बल्टी में बुड़ के मर गए भैया। सूरीनाम देश लार्वेई के बातचीत हुए हैं और बप्पा गए देखे तो बेटा हुआ एक बरिश के लड़का के मुड़ी बल्टी में नीचे है, गोड़ ऊपर है और नतीरक बल्टी में पानी रहा हुई भैया, और लड़का वही में बुड़ के मर गए है। बड़ी दुख के बात है। फरनीम दत किंच in the keuken met zijn hoofd in een met water gevulde emmer terechtkwam en terechtkwam, waarna die kind is overleden mensen. Aur je hebt betaald dat papa lardkwa kan halen ze buiten nikar ke, aur oké kabel reanimeer kari zega, maar lardka na bejaai paise dosto. बाप लड़का ना बचा, इसे बड़ी दुख भारी कहानी है। इसे भैया एक आदमी लाश होई गया रहा, एक भाई लाश होई गया रहा और ओकर भाई ओके ढूंढे है, खोजे है, खोजे है, भैया लाश होई गया रहा। तो अब जाई के भैया मिलल है भैया, तब बोलिए कहाँ मिलल है भैया, एगो रास्ता का नाम बा अधीन वैक्सीरी नाम में, और ये बेचारा के वहाँ पे ततई से टंगल रहा भाई अनुमान क्रिक मान रख डिस्क्रिप्शन से लीफन तुन है से इनफॉर्मिस्ट ब्रो लीफस लूज आंथ्रोफ अन एन बूम लांग्स द अधीन वैक् इन सूरीनाम। अब लोग पेड़ लगे होकर मिलल है। फॉर नोमन वॉर्ड द रिस्लाख्त ऑफर बुधवार से इलाज भैल असोमार के मिलल है। वारफान ओकर लेखाम फर के द ऑल इन फेयर स्टार फॉर उन बीइंग डिमेंस। ये भी एक बहुत दुख भरी दुख वाद बात है न्यूज से दोस्तों। साथ है साथ भैया बोले जिसके हाथ में लाठी वही ले जाएगा भाई। अब चिनोआ भैया बंदूक ले ले और जंगल में है जहां सोना खुदा है, एकर मारे में पार्लियामेंटेरियन प्लाटन फ्रागते इखन में अनवीसखेत स्वार बवापन दे शिनीसन ऑफ हेट खेल गोल्ड फेल्डन में से कहने के अब उस सब के विश्वास ना भैया अपन फैल खैत सबन अपरे करे है स्कौतु सुर जाति के हुआ विश्वास ना भैया बोले उस फैल खैत ना कर पावे है। दारम दे एकर बारे एनडीपी पार्लियामेंट रायमन सपून बोले है सोमवार के दयाना में बोले सरखन आउट ओवर द बिल्डिंग जो सोशल मीडिया पे दिखावे कि स्वार चिनवालो बड़का बड़का बंदूक कैमोफ्लेज क्लेडिंग लेके और सोना जहां खोदे उस सब के हुआ बेनलात में से बनबा। एकर बारे में हनीश मनोरथ का बोले है बोले एकर बारे में तू का बोले बोले तू मिनिस्टर बाटे कौन सी बाटे एसिक्यूलर सर वेकन द बिल इन द एरिया ऑन द होल्ड विनिंग वार खवापन नीट नेशनल से डेमोंस्ट्रेटिव opstellen naar de gemeenschap toe. Our NDP Rabin Permisser bole bezorgdheid uit over de aanwezigheid van gewapende groepen in het binnenland. Daarnaast wees hij de grote hoeveelheden chemicalium die naar de grondvelden worden gebracht en de mogelijke gevolgen zoals van het milieu. Tot dus toe Amlun Jane he, niet zo lang geleden वहाँ पे घर और तुरात्रा भैया और रहा दुई को प्रोजेक्ट रहा और वहाँ पे भी वापन बड़का बड़का बंदूक लेके सब पकड़ाई के ऊपर बैठल और घर हुआ तुरात्रा भैया। तो एकर बारे में भी ऑफेंडिंग में के हुआ देशवा के स्कौतु के है स्कौतु के भैया सुर जाति के ही तो पर्टिकुलर हमने किला अपन एक फेलखेत खतीन बंदूक ले ले और हुआ पर का बोले अपन अपन भवाक करे है। तो ये बात है जनता कि हमारा सूरीनाम में बोले जेकर हाथ में लाठे वही भैंस ले जाई तब बंदूक ले ले अपरे के करे है। और तू जाने है बंदूक के ताकत कितना जबड़े भैया देश अमर मोर्दन मराई गए कहीं कुछ ना भैल हुआ मोईवाना के मराई गए कहीं कुछ ना भैल। तो जेकर हाथ में सूरीनाम में बंदूक है भैया वही जीते है। रोफट बंदूक ले चले आदमी के लूट लूट चल जा है तो बंदूक भाई बड़ी ताकत। अब देखो फेल और फल पारा में बहु गंध मचल भैया बड़ी
बड़ी गंध बचल है। बोले ऑन द ड्रग सेस मांदे बतालेंग अख्तर स्थान थे भैया लोग के। बोले है हम लोग 6 महीना पैसा ना पहली बाटी जोन जाए, लेकिन हम लोग घर के 2-3 महिला जोन उठाईला फेड ऑफ हाल इन डिस्ट्रिक्ट पारा स्टार्ट ऑन द ज्वार ड्रग दो बतालेंग अख्तर स्थान हुआ के ऑन द नेमस। बोले है अफाल फरसामलिंगन सामलिंगन देसे पैट्रिक कैंसन है wachten de uitvoerders al meer dan 6 maanden op hun vergoeding, waardoor de dierverlening in gevaar komt en hygiëne in het district onder de druk staat. Mensen, ondernemers kunnen kosten niet blijven dragen. Toen we ja regering kakere he, ja paisana bereid, onderwijs ke paisana bereid, heb ik ke paisana bereid, de bootwal ke paisana bereid, maar dit is geen nieuw mensen. Dit kennen we allemaal in Suriname, dat mensen jaren niks hebben gehad, of dit raar een onderwijs ke paisara gaan achterstaan. Hoe be ondernemers kunnen kosten niet blijven dragen. Ja, we samenwerken met de minister. Veld ophaal valt onder directoraat van openbare groen en afvalbeheer. Or ken het ken zijn huis willen regelmatig overleg. Carice minister van openbare werken zei. Hij gaf aan dat de volgende beschikbare informatie, administratieve voorbereidingen, grote dienst zijn afgerond en dat de uiteindelijk betaling afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de financiële middelen. Dat kan je zeggen. Weer bole administratie. Bole administratie. Hij zei en mij ook een koopkrachtversterking. Dan doen jullie toch je werk niet goed. De administratie achterstaan. Bart, hè? Dan zijn jullie niet op tijd met jullie werk. Jullie moeten je lang gewoon goed draaien, mensen. Mensen moeten op tijd betaald worden. Zoals de boothouder, schoolmensen, leerkrachten. En nu de ophaaldiensten. Itra hun ambtenaar de zoam he kontje krijgen. Om herhaling van de problemen te voorkomen, werkt de DC. Structurele oplossing, mensen. Bolle he, ihega. Broekopondo medusto. Jahape, para medusto. Jahapare. लोग पैसा ना पैसे तो यहाँ पे भैया हमारे रॉनी ब्रेसवाइक का बोले रखेरिंग ही फिर बलांगस्टेलिंग इन फॉर हार एकन बखरूटिंग रखे रॉनी ये कोई बोले आफत चीज बोले भैया और रॉनी बोले हैगा बोले फंदाक बोले है खबेल को सिचुएशन दर ये नेशनल असेंबली अंदर हाफ घंटा यूर लातिक आयल है और बोले है गा जब आईबो करल है तो बोले प्लाफ 3 यूर 12 बजे शुरू भेल है और हम लोग के फीपे जो ने बोले 12 बजे ना 11 बजे आस पर फ्राग में आप सिटे यूरी अलमान इन द डीएनए तो लिखा दार सिटे यूरी तो लिखा दार मेंसे De ene voorzitter van de DNA die zegt dat er 10 uur afspraak was. En de vicepresident die zegt 11 uur hadden we afspraak. Maar dat begon om 12 uur. Dus hoe dan ook, of het 10 uur is of 11 uur. U bent gewoon te laat. De voorzitter schoof zijn kritische kanttekening beslist niet onder de stoelen of banken. Brunswijk bolle hegeiker baren mee. Bolle eigen begroting heeft fit het. Een kwalijke zaak dat op dergelijke wijze wordt omgegaan met het parlement. Op de Brunswijk beklemtonen dat deze kwestie absoluut geen ongeplande situatie betreft. Maar de materialen van zwaarwichtige ardimanden van tevoren is besproken. Toen Brunswijk, ik erbaar mee, maar ja, hoe aap het matjaai ze. En dan geef ik hem groot gelijk, mensen. Mensen moeten ze werk goed gewoon doen. Abuanka bole, degene die het gat hebben gegraven klagen vandaag da. Wang bhaiya o weke bole holwa tulo apre khodle bolo sab klak kare van het huis hoofdstraat ke holwon baradi se khodle bhaiya ha 2000 so fis kani ketra des hum log ke chichha ke leder hoige oi bole als we geld lenen om oude schulden te lossen, waar is dan de economische productie die ervoor zorgt dat we in de toekomst minder hoeven te betalen, werd vandaag per voorgehouden door de VHP-assembleelid Gangarai Wang in de Nationale Assemblee. Vandaag is het hoogste college van de staat een aanvang gemaakt. Begroting ke bare mein, behandeling ke bare mein.
तो ये जो बखरूतिंग के बारे में बहुत ज्यादा आप देखो बैतलान से साका के मिनिस्टर के है भैया हम लोग के आउट फोर्स से तरफा ने दिया ना और वो हैगा मनीष्वर भी अब वो है मिनिस्टर फन बैतलान साका के अब वो का बोले बोले एन फाइव तक दैचन अमतनारन के बोले हम लोग पैसा ना भरेला बोले एन फाइव तक दैसे अनमी के हम लोग परसों लगे आदमी के हम लोग पैसा भरेला पता ना वो सब आमतनार है कि ना मैं बोले एन फाइव तक दैसे आदमी बोले हम लोग पैसा भरेला आमतरानर अपराध तब वो सब के एडमिनिस्ट्रेशन कलप ना हुए भैया अब तय ना रहे हैं तो काबल कोप क्राफर्स तैरकिंग के पैसा ना भरा है और हाल के पैसा ना भरा है स्कूल के एक्स्ट्रा जो सामान कमाई से ना भरा है तो एन फाइव तक दईसन के वेल पैसा भरा है अमतनार के दट मार्क द मिनिस्टर बिनान से साक मरिनुस फ्रॉम बी बकेन फॉल्क द बमिस मंस इज द हुडिक सिचुएशन बरीसन से scheef gegroeid en zijn structurele maatregelen noodzakelijk om orde op zaken te stellen. यहां पे बताई गई है एक और बारे में डिस्कशन पहले बोले 2000 सो genoemde स्पूक अमतनार रहेगा जो कभी काम पे ना आवे 2000 आदमी के पैसा भरा है एन पर्सोनन फन विद अनवेजेगेट एन वर्कसामहेडन नादर अंडरसोख्त मुटन वर्डन दारबे गाफ है आन दैट द ओवरहेड नीट लंगर आलेन स्प्रेक कि 51,000 अमतनारे है मार ओवर शेयर का 51,000 पर्सोनन दी दोर द स्टार्ट वर्डन बताल अस अमतनार इक स्प्रेक नीट मेर ओवर 51,000 अमतनारे मार ओवर 51,000 मेंसन दी दोर द ओवरहेड वर्डन बताल अस अमतनार al dus de minister ook wel een verschil tussen personeel bestand en dienstverlenging to ego screen corona bhaiya kon admi awe kaam pe kon admi na awe hai omscholing en herplaatsing de regering werkt volgens de minister aan een traject om overtollig personeel om te scholen en waar mogelijk te begeleiden to dosto kab hamar deswa sudhri bhaiya sudhar jao padhal admi hai maar as u ziet namelijk hun ontwikkeling namelijk in een land hoe je bepaalde dingen moet aanpakken dan laat het de wensen over mensen laten we daar zeker erover nadenken hoe gaan wij onze land namelijk vooruitbrengen dik over ogen straten op bari bari holla het is een troebele spiegel geworden van het land een spiegel waarin onze rechtsstaat onze bestuur internationale financiering uiteindelijk ook het vertrouwen van de burger samenkomen we willen iedere partij lijkt namelijk gelijk te hebben en toch verliest iedereen of beter gezegd de samenleving die verliest mensen Orbole Hega, een perspectief heeft bij Italië een sterk punt. Een overheid kan die selectief bepalen welke rechtelijke uitspraken zij wel en niet uitvoert. Anders wordt de rechtsstaat uitgehold, mensen. यहाँ पे पावी रेजो का बोले है भैया बोले फाइनेंशियल सिचुएशन बोले बहुत अदाखिंग हमारे देश में बा ये भी इंडिया ना हैगा और बोले हम लोग के फाइनेंशियल सिचुएशन जो हैगा फाइनेंशियल बहुफते जो हैगा ओवरहेड के Bole op het voorgestelde schaalschuldplan zei dat de NPR-fractieleider Gerald Pauwiroje zomaar een keer radioprogramma pego boli zei. Bole hega, bole verkeerd Surinaamse financieel in een uitdagende situatie. De bole DNA is gisteren in openbare vergadering bijeengekomen voor de behandeling van het onderwerp tot vaststelling van de staatsbegroting 2026 keer. Oor hoe voorzitter John hei Gerald Pauwiroje keer, oor hei VP. Mensen, en hij zei dat er geen systeem is, geen systeem, maar het systeem wordt het niet letterlijk gekinkt, mensen. Dat hebben wij niet gezien. Madura भैया आंदोलन जाने निकोलास मदुरा के अमेरिका उठा लेंगे ट्रम्प और ओकर साख फॉर द रेक्टर जा है आवे है और वेनेजुएलांस के और प्रेसिडेंट निकोलास मदुरा हिव से रिलीज सिस्टम बोले है टीम इन द फॉरेन स्टेट्स आउट गोब्रेड मेटन
prominente advocaat in aanloop naar zijn strafzaak, terwijl voormalige leiders zich voorbereiden op een langdurige juridische strijd tegen ernstige aanklachten, wordt de zaak wereldwijd gevolgd vanwege de mogelijke politieke gevolgen voor Venezuela. De lere bhaiya jabar jabar advocaat lewe paiso to hai madura ke bhaiya obole langdurig kitra din hoge ban hai madura dono parani advocaat Anna Estifao bole die eerder deel uitmaakte van het initiatief van een rapper Saint Diddy Combs de bevoegdheden de toevoeging van de ervaring strafpleiter toen ja betaai gei hai ki asaid madura lade bhaiya ki hume chodo hume chodo hume chodo aur madura ke amerika pakad ke jakde baaz hal mein bhaiya betaai gei de komende maanden zullen naar verwachting in het teken staan van juridische procedure waarbij verdediging mogelijk niet alleen de aanklachten zal aanvechten, maar ook de regelmatig van Maduro's arrestatie ter discussie zal stellen. Toen je buitenland nieuws bij hem aanplukt, patate janta, aanplukt jante. We moeten alles in huis hebben, een beetje algemene nieuws te gaan lezen voor ons alle mensen. Yo, je kan niet alles, maar je gaat je best doen toch bepaalde dingen, bepaalde nieuws toch te gaan lezen. Tropische temperaturen, benauwdheid en plaknachtig dit weekend wordt puffen. Ja, likale bhaiya, hamana bolila. यहां पर लिखा गया है लेकिन उसके बाद हम चलते हैं और आगे भैया 4.5 बरिस के जहल पाई से सितार्त एगो जगह के नाम बा सितार 4.5 बरिस के जहल पाई से अख्तन सेफ तक यार के अपन माई के माढ़ाड़ी से एक मिला और होखरस तरफदार ओपनबार मिनिस्टर हाथ के एस 2023 met ook een overdosis insuline deze ga. De juiste justitie eist 2 weken geleden ego 256-jarige Josine Eske niet meer terug de cel in. Obole hega. Bolle de rechtbank vond de straf eist te laag omdat die een onvoldoende afschrikwekkende werking dan anderen heeft. De verdachte krijgt een milde straf voor moord. Stel ze rechtbank, dat komt dooral dat de pleeg gepleegd is in een heel bijzonder context mee. Omdat de vrouw van minder toereikingsvatbaar is. Daarnaast heeft de zaak volgens de rechtbank lang geduurd. Er verklaart dat ze haar moeder op eigen verzoek een hoge dossier insuline heeft gegeven. Omdat de vrouw eerder gezegd had niet meer te willen leven. Volgens de rechtbank is niet vastkomend te staan dat de moeder een serieuze, weloverwogen, duurzame wil had van het overleden. Ukraine भैया रूसलान के उल्टे अनफाल करे है ओली रफने मॉस्को में और ड्रोन से असाइड उक्रेन दागे भैया उक्रेन heeft een Russische olieraffinaderij aangevallen in Moskou meldde Oekraïense president Zelensky bole अब की हम लोग मॉस्को में कल्ली बाटी van Oekraïne lang afstand raketten bole हम लोग चले ली बाटी हुआ के बर्खन मिस्के मॉस्को बोले हैं बर्खन मिस्टर मॉस्को के कीची जो आ raffinaderij met legal hey, oh bole hega 35% van de brandstofbehoefte van de hoofdstad, bole hega de voorziet volgens de Oekraïense nieuws, bole hega volgens Russische luchtverdediging Moskou met 60 Oekraïense drones, bole neergehaald, bole 60 bole hemlo greili hey, bole vanwege de aanvallen werden de luchthavens bij de hoofdstad tijdelijk gesloten. Russische reizigers hebben bijna dagelijks te maken met de annuleringen of vertraging van vluchten door de dronewaarschuwingen. Rusland moet gedwongen worden een eind te maken aan de oorlog tegen ons volk. Ik erbaar met Zelensky bolehiga. Oekraïne vormen een belangrijke onderdeel van de werkelijke druk. Bolehiki, hamlo druk karila. Kurusland ke chahi jhagadwa. Ban kareke. Obolo doro jahe. De gauwe dit doen toch mensen. Zo gaat het.

मोहब्बत और मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत जो है वो बहुत बड़ा काम का चीज़ है और कभी कभी मोहब्बत में बहुत बहुत गलतियाँ हो जाती है दोस्तों। और गलतियाँ तो हमारे लोग का भी एक हिस्सा है हमारे दोस्तों। तो आज हम आप लोग को कुछ प्यार भरी शायरी सुनाएंगे, कुछ गाना हम सुनाएंगे एक घंटे के लिए, और उसके बाद तो हमारा प्रोग्राम को और आगे को हम बढ़ाएंगे। कहते हैं तेरे ख्याल में जब बेख्याल होता हूँ, तेरे ख्याल में मैं जब बेख्याल होता हूँ, जरा सा देर को ही सही बेमिसाल होता हूँ। थोड़ा से देर होइगे बाकी फिर भी बेमिसाल होता हूँ। तो हम चलते हैं दोस्तों। मुझे नींद न आए, आपको आते हैं? आपको क्या आते हैं? अभी क्या आएंगे दोस्तों, लेकिन आएंगे जरूर। हम चलते हैं एक पुराना नंबर की ओर।

Galo, muskuralo, mehfilis sejalo, hamishaki tara program ka shuruaat. तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूं हमारे सूरीनाम देश और हॉलैंड देश का एक महान गायक, जबरदस्त बैठक गाना, सेमी क्लासिकल म्यूजिक का महागुरु, और मेरे ख्याल से द मैन विद द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस फ्रॉम द बैठक गाना डायनेस्टी, उस्तादों का उस्ताद श्री जगदीश उदित राम जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के अमीरों की दुनिया में क्या होता है।

शाबाश शाबाश, जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का, हॉलैंड देश का, जिस पे हमें नाज है, गर्व है, उस्तादों का उस्ताद और एक जबरदस्त महा महा गुरु, हमने बैठक गाना और सेमी क्लासिकल ग्रुप का म्यूजिक जो इसने सुनाया है महफिलों में और कुछ रिकॉर्डे भी वारफान इन फानवती नेत होत है। फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है यारो जोधपुर से, आप सरनामी संगीत को सुन रहे हैं। अगला बयान एक और महान गायक हमारे हॉलैंडीज का, द किंग ऑफ बैठक गाना। ये टाइटल ये महान फनकार को मिला है, अगर ये गाना आप सुनेंगे तो आपको भी मालूम हो जाएगा व्हाई ही गॉट द नेम ऑफ द किंग ऑफ बैठक गाना। उस्तादों का उस्ताद मैस्ट्रो संदीप।

महान गायक के ऐसा कलाकार जिसपे हमें नाज है, गर्व है, द किंग ऑफ बैठक गाना, उस्तादों का उस्ताद श्री संदीप बदलू जी। अगला बयान एक और नौजवान कलाकार को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाने वाले हैं, एक जबरदस्त गायक ओरिजिनल गाया है महान गायक त्रिनिदाद का श्री यूसुफ खान जी ने, और इतना जवान उम्र में है वो 16 तुनी दित निमर सॉन्ग मैस्ट्रो सुजल उमराव फ्रॉम द एल्बम द बिगेनिंग।

0: शाबाश जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश हॉलैंड देश का यंग नौजवान टाइगर ऑफ बैठक गाना मैस्ट्रो सुजल उमराव जी। एक और मजेदार सॉन्ग चुन के रख चुका हूं प्लेयर में, इट्स अ वेरी नाइस चटनी सॉन्ग आई 2025 और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को विशाल खेमई जी विद द म्यूजिक फरमासी मस्ती ग्रुप कि म्याओ म्याओ तू कैसन बिल्ली बाटे मिलके सुनते है, क्या बात है।
1: अरे तनी बिल्ली के कहानी सुन ले रे, बड़ा लेसी बिलारवा

आयुष उभरता हुआ कलाकार विशाल खेमई जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अर्थ यानी म्यूजिक बाय म्यूजिक फॉर्मासी मस्ती ग्रुप कौन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साप्ताहिक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सर नामी संगीत का। अगला बयान नौजवान कलाकार हमारे हॉलैंडीज का इंटरनेशनल कलाकार बन चुका है मैस्त्रो शिवम राजाराम छोड़ के सहरिया मिक्स।

तुम्हारे प्रिय प्रिय साथियों, वक्त हो गया ना कुछ ज्ञान के बातें हो जाए। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने मनुष्य इंसानियत के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये आशा उम्मीद लेकर कि इन बातों से कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखेंगे। तो अर्ज किया है श्री मिशेल फुकाउल्ट, है वसन फ्रांस एसाइस्ट एंड फिलोसोफ 1926-1984। और माइकल फुकाउल्ट ने कहा है मनुष्य के बारे में यारों की, द मेंस साल फरद्वेनन अस एन गजिख्त इन हेट जंत ऑफ द फ्लूटलाइन फन द जी। आगे में कहा है श्री स्पिनोजा जी, है वसन नीदरलैंड्स फिलोसोफ 1632-1677। और स्पिनोजा जी ने कहा है मनुष्य के बारे में यारों की, द फ्रेय मेंस साल ट्रखटन मेट सैन मीद मेंसन इन एन सो गुड मोगलिके फरस्टांड होडिंग ते लेवन, एरवान ओवरतुइग्ड दैट आन हेट लेवन इन द गेमेनस्चाप द फोरकेर मूट वर्डन गेगेवन बोवन दैट इन एनजामहेड। Antoine de Rivarol, Frans schrijver en epigramist, 1753-1801. Or Antoine de Rivarol, een mens brengt zijn leven door met redeneren over het verleden, klagen over het heden en zich zorgen maken over de toekomst. Zenkoon, boeddhistisch raadsel of paradox, verder identiteit onbekend. Zenkoon nevermaya he, een monnik vroeg aan het leermeester, wat is de weg? De meester antwoordde, een mens die met open ogen in een bron valt. Gerard Reeves, Nederlands schrijver en dichter, 1923-2006. Gerard Reeves, Nikahae, een waarheid is iets wat nog bewezen, nog weerlegd kan worden. Wat een feit geldt, precies het tegendeel. Voor een feit geldt precies het tegendeel. God is mens geworden, is een waarheid. Terwijl Napoleon werd verslagen bij Waterloo, een feit is. Onbekende schrijver, hoe achterdochtiger een mens is, hoe minder hij zelf is te vertrouwen. Pearl S. Buck, Amerikaans schrijfster en Nobel Prijswinnares literatuur 1938, leefde van 1892-1973. Oh, Pearl S. Buck, met goedheid kan men bijna elk mens verrassen. Dat klopt hoor. Gerrit Komrij, Nederlands schrijver, 1944-2012. Oh, Gerrit Komrij, nikahai manusje kibarmiaroki. Wat geschreven staat is alleen waardevol als het kan gelezen worden als handleiding bij het leven, als handleiding bij de mens. En de laatste van vandaag, kahaisri Confucius, Bahuti Puranese Manika, Chinese filosoof, liefde van 479-551 voor Christus, before Christ, ja. O Confucius, ne kahae manusje kibarimearuki, wie de kracht van de woorden niet kent, kan de mens niet kennen. Tomare priye priye sajjano, abhi aap kuch kahaute, kuch udaharan sune, जो मनुष्य के बारे में जाता है। U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over de mensheid gingen. Ja, zo meer lekker in baten komen, ja,
सभी तक पहुंचाया, किन बातों से कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखते रहेंगे। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का, एक महान फनकार, इंटरनेशनल कलाकार जो इतने नाम कमा चुका है वर्ल्ड वाइड हमारे बैठक गाना के डायनेस्टी में, द लायन ऑफ बैठक गाना, हमारे देनाक्षर का उस्तारों का उस्ताद देवेंद्र सिंह शिवनाथ, बार बार बगिया में कोयल ना बोले।

एकदम शाबाश शाबाश शाबाश महान गायक हमारे हॉलैंडीज का इंटरनेशनल कलाकार उस्तादों का उस्ताद लायन ऑफ बैठक गाना द ग्रेट देवेंद्र सिंह सिवना जी। एक और जबरदस्त बयान मजेदार सॉन्ग आप सुनने वाले हैं हमारे प्रिय प्रिय साथियों कि मैं फोकल यौ फोकल ये वेत तो मोर चिड़ैया तोर चिड़ैया आदित्य राम सुकुल का बिल्कुल जबरदस्त सॉन्ग जो आजकल हमारे सूरीनाम देश में हलचल मचा रहा है और उड़कर आ गया है भी चिड़ैया हमारे हॉलैंड देश में भी। मिलकर सुनते हैं।

मजेदार सॉन्ग है श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया और सुनाने वाला था आदित्य राम सुकुर स्वीट मेलोडीज फॉरएवर। तो आज का इस हसीन प्रोग्राम में सरनामी संगीत बैठक गाना का प्रोग्राम में का आखिरी बयान आप सुनेंगे और वो सुनाने वाली है आर्याना ठाकुर दिन घर में आए।

बादशाह बादशाह ब्यूटीफुल सॉन्ग है, घर में आए सुनाई आप सभी को द ग्रेट आर्याना ठाकुर दिन। तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, यही तक था आज का बैठक गाना पहला अध्याय सरनामी संगीत का, जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, आप ही का आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है।

van Hindustani Radio Kakari Ram Abis Rutao Kiswami Live Broadcast Hai हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंधोर, जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें, इश्तिहारे, और अगर आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवाकर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यार, तो हो सकता है कुछ ना कुछ हो सकता है। ये बात मैं आप श्रोताओं के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायती से दाम, सिर्फ इस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, अब मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायती सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही कहते आ रहा हूँ आप सभी से कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को ऑल इंडिया भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख सभी जानकारी। बेलेटेरेंस कंतूर यूर फन मांडाग टोट फ्रेडाग फन 9 यूर स्मोर्गंस टोट 5 यूर स्मिरग्स ऑफ द फोल्गंडे टेलीफोन नंबर्स कंतूर 070-365-2247 स्टूडियो 070-362-2077। तो जो भी रेडियो का काम हो, देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी बेल ऑफ न्यूज 7 3 6 2 4 tijdens kantooruren van maandag tot vrijdag van 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. To aap bhi hum logo ka member bane aur ko bhi banaye, u bent van harte welkom. Wada ke mutabik ek dam badhte hai program ki taraf, aur hamare dusra adhyay sarnami sangeet ka hamesha ki tarah kuch orchestra music, सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक, एक अति सुंदर बयान पहले भी मैं महान गायक हमारे सुरीनाम देश का द ग्रेट रायन नन्नन जी में द म्यूजिक फार्मेसी क्लास एक्स पहले भी मैं

0: मोहब्बत हो ना जाए म्यूजिक फरमासी गुड फाइव्स मिस्टर पे प्री फीट क्वाइकी मैंने पायल एनतिलक टुगेदर विद सूत पतात मिक्स म्यूजिक फरमासी नो मर्सी एक बार फिर नाथान दी मिलके सुनते हैं सुरिनाम देश का जबरदस्त म्यूजिक फरमासी नो मर्सी का बिल्कुल नया सॉन्ग
1: It is also the case of sexy ladies in a blazer. Who in the merchant line?

Beautiful song, हमारे सरनामी संगीत का प्रोग्राम में श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया अपना बना ले और मन मेरी जान। सुनाने वाले थे रणधीर और संजय अयोध्या, म्यूजिक फरमाइशी एक्सक्लूसिव। तो साथियों, वक्त हो गया कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। लोग मेरी शायरी को इतने शिद्दत से पढ़ते हैं, लोग मेरी शायरी को इतने शिद्दत से पढ़ते हैं जैसे उनको भी मेरी तन्हा, जैसे मेरी भी उनको तरह किसी बेवफा से प्यार हुआ था। गलत सुना था हमने मोहब्बत आंखों से होती है, गलत सुना था हमने मोहब्बत आंखों से होती है। दिल तो वो भी ले जाते हैं, दिल तो वो भी ले जाते हैं जो पलके तक नहीं उठाते। क्या बात है, फूल देखते थे जनाजे पे हमेशा, फूल तो देखते थे जनाजे पे हमेशा, कल मेरी आंखों ने फूलों के जनाजे देखे। ये भी होता है, सुकून मिलता है दो शब्द कागज में उतार कर, सुकून मिलता है दो शब्द कागज में उतार कर, कह भी देती हूं और आवाज भी नहीं होती। बस एक तुझे ही यकीन नहीं मेरे जज्बातों पर, बस एक तुझे ही यकीन नहीं मेरे जज्बातों पर, वरना कितने ही दीवाने बन बैठे मेरी मोहब्बत की दास्तां सुनकर। मेरी शिकवों पे उसने हंस कर कहा, मेरी शिकवों पे उसने हंस कर कहा, किसने की थी वफा तुमसे जो हम वफा करते तुमसे। ये भी होता है यारो। तो ये था कुछ शेर्स हमारे शेर्स की चाहने वालों के लिए। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं एक और जबरदस्त गायक जो काफी नाम कमा चुका है वर्ल्ड वाइड, रोहित चैन। चान को लाते हैं म्यूजिक बाय मैस्ट्रो ज्वाला। आज चल के तुझे क्या बात है रोहित भाई,

Kingston Town, music by Maestro Ujwala. अगला बयान हमारे हॉलैंडिस्ट का जबरदस्त गायक मैस्रो किरण केदार को लाते हैं, बिल्कुल नया सॉन्ग उसका, प्यार हमारा अंत नूरी, लाइव रिकॉर्डिंग बाय म्यूजिक फरमाशी द बैंड.

Beauty Vision, Wonder Vision, प्यार हमारा अमर रहेगा बाद में आता था नूरी, लेकिन वो सुनाऊंगा अगले सप्ते। अब लेकर चलते हैं टू द दुपट्टा सॉन्ग, रानी दत्ता एंड आशली एस्मे, म्यूजिक फॉर माजी सेलेक्ट बीट्स।

Thank you. The Dupatta song by Rani Dattai and Ashley Esme. Music by Selecta Beats Show Band. तो यारो आज का इस हसीन प्रोग्राम सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक का एक आखिरी बयान आप सुनेंगे और उस रंग जा रहे हैं नातान और सफियरा पारी करो शेक इट फ्रॉम 2024 म्यूजिक फरमाइशी शो टाइम

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स से जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपको फिर से एक बार स्वागतम हमारे कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड सो लोबी लोबी अंत ब्लेसिंग्स फॉर एवरीबॉडी। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से इश्तिहारे जरूरी खबरें, तो देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी स्टार बेउंस ऑफ द ईस्ट प्लाट्स। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें टेलेंस कंटोर उर फन मांडा टू फ्राइडे फन 9 to 5 op de volgende telefoonnummers 070-365-2247. Ja, de studio Katarka nummer 070-362-2077. Toe jobie radio ka kaam ho, denk aan Fahun Hindustani Radio. Bent u nog geen lid van Fahun Hindustani Radio? To guzarish bint u niet binnen, kia ja raha hai, kia bijjel se jelt Fahun Hindustani रेडियो का मेंबर बने औरों को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है यारो। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने पर। इसी तरह हम लोगों के बारे में बातें शाते करते रहना यारो, थोड़ा बहुत रेकलाम बनाते रहना, इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर। एक ही दम लेकर चलते हैं यारो प्रोग्राम की तरफ, और अब से आप सुनेंगे कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। एक महान गायक, उभरता हुआ कलाकार जो इतना नाम कमा चुका है हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, जो कुछ साल हुए है अंदर गया था फिया इंडियन आइडल, कौन नहीं जानता है महान फनकार द ग्रेट विशाल मिश्रा जी। खुद गाने लिखते हैं, कंपोज करते हैं, गाते हैं और बैठ जाते भी है यारो, क्या बात है। मल्टी टैलेंटेड कलाकार, और ये अति सुंदर बयान जो उसने गाया है मैं आप सभी को सुनाने को चाहता हूँ यारो। यहाँ कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी होने लगा, अरे बाप रे बाप, गनवे भग गए, लेकिन कोई बात नहीं, खोज के मैं धर देता हूँ। आ गया, कैसा हुआ फ्रॉम द मूवी कबीर सिंह, उन्हीं के आवाज में, उन्हीं के लिखा हुआ और उन्हीं का कंपोज किया हुआ ये अति सुंदर बयान, स्ट्रेट टू द हार्ट।

que segua from the movie Kabir Singh. Vishal Mishra, the great artist, उसी के बनाया हुआ ये मीठा धुन और लिखा है अति सुंदर बयान को मनोज मुंतशीर जी ने. अगला बयान मजेदार सॉन्ग चोली के पीछे क्या होते हैं यारो, मिल के सुनते हैं महान गायक दिलजीत दोसंज और साथ दे रहे थे, दे रहा है आई पी सिंह आलका यांगनिक और इला अरुण. लाइविक से आई पी सिंह जी का और संगीत तैयार किया है अक्षय. मिल के सुनते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग.

0: domnule Tito.
1: Ati sundar bayane cholike piche. From the movie Crew, Kareena Kapoor is movie mein kaam kiya hai yaro. Aur sangeet diya hai is movie mein Akshay Ant. Maestro Alpi, gane wale hai Diljit Dosanjh aur IP Singh, Alka Yagnik, Ila Arun. Ek aur jabardast song chun ke rakh chuka hoon main player mein aap sabhi ke naam pe. Mahan gayak, ek bahut hi jabardast sangeetkar jodi hai. Sangeet ki khas karke गाने के क्षेत्रों पे पवनदीप राजन और अरुणीता कांजीलाल का बिल्कुल नया सॉन्ग इस दिल को और बनाया है वन ऑफ माय फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर माएस्ट्रो जीत गंगुली जी. मिलके सुनते हैं.

पुरुषों श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया इस दिल को, क्या बात है, अरुणिता कांजीलाल और पवनदीप राजन के आवाजों में। द म्यूजिक इज कंपोज बाय माएस्ट्रो जीत गंगुली। अगला बयान की तरफ जब देखता हूं तो फिल्म लकीर का ये अति सुंदर बयान, म्यूजिक बाय माएस्ट्रो ए आर रहमान और लेखक है महबूब। मिलके सुनते हैं महान गायक माएस्ट्रो शान और कविता कृष्ण मूर्ति जी की आवाजों में ये अति सुंदर बयान, पैगाम।

गाने वाले शान और कविता कृष्णमूर्ति जी, महान संगीतकार ए आर रहमान के साज और अल्फाज़े है मैस्त्रो महबूब जी का। फ्रॉम द सेम मूवी लकीर नचले, और इस बार जबरदस्त गायक द किंग ऑफ द भांगड़ा सॉन्ग्स दिलेर मेहदी, अल्फाज़े है महबूब जी का।

Hey, beautiful song, the Bhangra King, Dilair Mehdi ke beautiful awaaz mein, from the movie Lakir, sangeetkar A.R. Rehman ke saaj. Tumhare yaaro, kuch aakhri shairs ho jaye na, aaj ke mere hisse ke karyakram mein. Arz kiya hai yaaro ki ek ladki mujhse boli, aap shamart hoke और हैंडसम हो के भी सिंगल क्यों हो. एक लड़की मुझसे बोली आप स्मार्ट हैंडसम हो के भी सिंगल क्यों. मैंने भी बोल दिया, मैंने भी मुस्कुरा के बोल दिया, संस्कार पगली संस्कार. कैसे बयां करूं उनके अंदाजे मोहब्बत का, कैसे बयां करूं उनके अंदाजे मोहब्बत का, जालिम ने जहर भी दिया तो वो भी अपने लबों पे लगा कर और नहीं पिया. ना चाहते हुए भी आ जाते हैं लबों पे तेरा नाम, ना चाहते हुए भी आ जाता है लबों पे तेरा नाम, कभी तेरी तारीफ में तो कभी तेरी शिकायत में. एक नफरत ही है ये दुनिया चांद लम्हों में जान लाते हैं, एक नफरत ही है जो ये दुनिया में थोड़ा बहुत चांद लाते हैं कुछ लम्हों के लिए, वरना चाहत का यकीन ढलना में तो जिंदगी बीत जाते हैं. आखिरी शेर यारो, जनता जानता हूं बहुत मशहूर हो रहे हैं मेरे अल्फाज और मेरे शायरी, जानता हूं बहुत मशहूर हो रहे हैं मेरे अल्फाज और मेरी शायरी, पर एक पगली ऐसी भी है, पर एक पगली ऐसी भी है जिसे मैं मना नहीं कर पाया, और वो है हमारी तन्हाई. तो ये था कुछ शेर्स आखिरी आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में. बयान सुनाने वाले हैं ऑल्सो फ्रॉम द मूवी लकीर, और इस बात द प्रिंस फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, द ग्रेट उदित नारायण जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे आर रहमान का सजाया हुआ ये अति सुंदर बयान सदियां.

जल गया जलता है, फ्रॉम द मूवी लकीर। मैस्ट्रो एआर रहमान के मधुर संगीत पर आप सुना सोनू निगम और आशा भोसले जी। वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है यारो, कुछ सॉन्ग्स रह गया है सुनाने के लिए। अगला बयान शहजादी, और इस बार एक जबरदस्त गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का मित्र विथ ए ग्रेट वॉइस, कुणाल गांजा वाला को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सभी को शहजादी ए आर रहमान की साज पर।

Beautiful song, wonderful song, sunaya aap sabhi ko, mahan gayak is zamane ka the great Kunal Ganjawala A.R. Rahman ke saaj aur sangeet par. तुम्हारे प्रिय प्रिय साथियों ये तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। ये आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ यारों कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में आप सभी को मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले दिनों में मैं फिर आप सभी से मिलने वाला हूँ आवाज के जरिए। और जाते जाते हमेशा की तरह तो कुछ ना कुछ गुना देता हूँ और इस बार कुछ संगीत के साथ।

0: जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज़ के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों के सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है www.faunfm.nl पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। जो बीमार लाचारी तंदुरुस्ती युवा के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी विवाह कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयां पेश है। मुझसे पहले आप कार्यक्रम सुन रहे थे हमारे सहयोगी श्रीमान सूर्य भगवान दीन का, बीरबल जी का। भैया बीरबल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए और सभी कार्यकर्ताओं के जरिए और हमारे दिरक्स के जरिए। आपको एक शुभ रात्रि पेश हो रहा है। भैया सूर्य भगवान दीन शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। जोंदा है, जी हाँ जोंदा है, सोंदा है। और तारीख 21 तारीख जून है और आप तत्पर है गीत गज़ल के कार्यक्रम यहाँ से लेकर हम शुरू कर रहे हैं भैया यूसुफ के साथ। भैया यूसुफ अपनी आवाज़ सुना दीजिएगा। देखूँ हाँ भैया यूसुफ।
1: या गुडनाफंत लिफ लुस्टरार, वी सैन अल बेगोनन मेट गीत एंड गज़ल, वी हैव अल टू मेंस ऑन द लाइन एंड आई होप दैट जुली वंदाग मसाल बेला।
0: ओके, चाहे फुटबॉल है,
1: फुटबॉल
0: कई बजे शुरू हुई ब्रो?
1: कौन सी बोले,
0: फुटबॉल कई बजे शुरू हुई?
1: ए वो बिगिन हो चुका है
0: कि खेले तो याने
1: है? खेले है स्पेन और सऊदी अरब, एक दिन का फिर नो।
0: ओ अभी ने कुछ हो चुका है, कई बजे शुरू मिल था याने? उतना फुटबॉल मेंस ना है तो
1: ट्यूनिशिया और जापान खेले है, जापान जीता ले 4-0 से, इसाइड स्पेन सऊदी अरब है।
0: हां
1: लास्ट बस
0: 21 juni,
1: de langste dag van het jaar.
0: Ja, dankjewel.
1: Uur,
0: daar had ik helemaal geen weet van. Ooit toe betekent hem jullie niet. Nee. Dus dames en heren, luisteraars, u heeft het van Jozef al gehoord. Langste dag vandaag.
1: Ja.
0: Hey Joost, dank je wel.
1: Alsjeblieft.
0: De Faun Hindustani Radio par aap tune, Geet Ghazal ke karyakram jari hai. Jahan tak mera khayal hai, jahan tak hum logo ki awaaz pahunch rahi hai, aap sabko hirde se swagat kar rahe hain Faun Hindustani Radio ke dwara Dharak shahar mein. और तार का नंबर तो आपको मालूम है, 0753567 या तो 0753567। योस एर को वह तनी आन कर दिया, वह गर्म लगे है। ओके दाम सने तनी गर्म है, वही खतिन तनी गया गला सूख जाए तो यू सब हमके कोवला दिए से। हम बोली दारू देवे के ना मांगे देवे, ना अपने पिए ना हमके पिए देवे। बहरहाल फन फन तो वेलकम ऑफ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

कि शायद पिटिया पर पसीनवा उल्टा चले है। तो लीजिए पहला सिलेक्शन मैं पेश कर रहा हूँ इस तरह से, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और शारदा जी।

0: मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और शारदा जी मिलके आपको ये दिवस सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देखते हैं भैया यूज कौन है एयर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। खुद नाफंत खुद नाफंत सिला कैसे रहले सिला
1: या खत खुद और भाई
0: सब कुछ मोई
1: या
0: यो सब बड़ा बदमाश है मान हमके कोला देवे पिए के इतना गरम हम सोची था नहीं कल गटैया उटैया खोले ना सुने अपने ना पिए ना हमके देवे है
1: तो ना मोई काम करे भाई
0: ना ना मोई करे के ताही तनी अप्लाई करे के। हाँ सिला और नवा हाल इपन बेरो कैसे
1: या सबकी तो इसने भाई मोई है सबकी।
0: सिला बताओ कुछ धल्ले गरम हुआ में
1: नहीं फंदाख नहीं भाई।
0: अच्छा खेल नहीं अच्छा ओके खेल नहीं धल्ले रही है ने नेक्स्ट वीक अब अच्छा माँ बताओ वार में तो वेल क्लिक करने में यो फना अपन ब्लेम आप बताओ
1: फिल्म गूंज उठी सहनाई
0: यार
1: तेरे सुर और मेरे गीत
0: तेरे सुर
1: ना मेरे सुर और तेरे गीत सो ही था
0: और हाँ मिल जाए मिल जाए यहाँ हमारा तो उल्टा हमके हर साल कर दिए अपने ही प्रीमा ये थी सीला जी इपन ब्यूरो के रहने वाली। चलिए देखते अगला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुद नाफंत।
2: अस्सलाम वालेकुम राम राम और नमस्कार सस्त्रियाकार।
0: वालेकुम अस्सलाम भैया नमस्कार कैसे समाचार है।
2: चले चले मोई भाई कैसे सब कोई
0: बस चले धीरे धीरे ऊपर वाला की दया से तुलक की कृपा से
2: जी
0: एक एक गुजा है
2: जी।
0: सुबह हो है शाम हो है रात हो है फिर सुबह हो है
2: हाँ,
0: या। और कुछ नवा हाल भैया मोहम्मद अच्छा बताओ
2: एगो है आशिक के पहली हवा सुहानी होती है फिर बर्बाद फिर जवानी होती है हर लड़की सोच से नहीं पीता सिगरेट उसके पीछे है भी कोई कहानी होती है।
0: वाह क्या बात है मोई हेल गुड प्रख्त अब बड़ा जोर चले हम दिखिला हाँ मोई फन कर ले तू
2: बपाल तरी से मोई लग गया तो चाहिए ना
0: हां तेरा
2: और बेसी दीपी उर्दू में है सब चीजों तो और मतलब दीपी हम ना जानी ला उर्दू उर्दू जाला बच्चा है भाई और दीपी जाए
0: ना ना समझेला
2: और हिंदी हिंदी हम ना जानला हिंदी अगर हिंदी जानती तब हम हिंदी में बोलती
0: ना कोई बात ना है चाहे उर्दू में बोल शेर शायरी चाहे उर्दू में बोल चाहे हिंदी में कोई बात ना है। अच्छा भैया मोहम्मद बताओ कौन गाना मांगा तुमने सुना है
2: फिल्म सबिस्तान
0: फिल्म सबिस्तान
2: हाँ नेहतिन ए ना फाइव तक के हैगा
0: हाँ
2: और गीत हैगा ए ये मौसम है बहार
0: ए ये
2: मौसम
0: मौसम
2: ए दिस ए फन एरिक ए बहार
0: ओ ए बहार
2: ए बहार हाँ
0: ए
2: और गाय से गीता दत्त और तलत महमूद
0: गीता
2: दत्त और तलत महमूद
0: नए प्रीमा
2: और सब सुनने वालों के और नाती लोग तुलक के खारती थी और फाहौन के सब समाचार और कोलीहास
0: थैंक यू
2: ओके
0: भैया मोहम्मद दांकेवल शुक्रिया बहुत बहुत और
2: आपके बहुत शुक्रिया
0: फैन आफंत
2: ओके सेल्फ द एक्सो बरातरी
0: तू के भी
2: राम राम और नमस्कार
0: जय सिया राम भैया नमस्कार
2: नमस्कार।
0: ये था जनाब मोहम्मद दनहा के रहने वाला। चलिए अगला गीत हम सुना रहे हैं बहुत दिन हुए ये गीत हमने भी नहीं सुने हैं चलो मिल के सुनते हैं। आज सुबह है ये इस गीत के बारे में पता नहीं मेरे जहन में कैसे आ गया तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं। उम्मीद है आप भी कहोगे हाँ गंगा ये गीत बहुत दिन हुए हमने नहीं सुने हैं और जिस समय आप तार करने वाले होंगे टाल के नंबर ढूंढ रहे हैं तो हम आपको बताते हैं। तार का नंबर है 9 7 3 5 6 2 2 7 4 या तो 9 7 3 2 6 2 7 4। चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में और आशा जी हैं

0: संग संग रहेगी तुम्हारी हुजूर, आशा जी और रफी साहब की आवाज़ में फिल्म मुलसिम में से निकाल कर निकली इंद्रियों से 1963 का ये गीत हमने पेश किया ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। कोई है लाइन पर भैया यूसुफ?
1: या
0: अच्छा एक मिनट,
1: या
0: फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदा नाफन
2: भाई राम राम
0: जय सिया राम तेलमा जी।
2: हाँ भाई कैसे बाटो?
0: बस चले धीरे धीरे, कैसे मुफरो तेलमा?
2: हमरो इसे धीरे धीरे लोलो होवे।
0: हाँ तो चाहिए तो रोलिंग स्टोन्स ने चाहिए धीरे धीरे लोलो होवे के।
2: हाँ वही बोली ला यूसुफ से, अब हम लोग के बुढ़ापा आयल है, हम लोग थोड़ा धौर पाओ खोई
0: ना धौरे तो ना खोई, बाकी रेसो में रहे खोई।
2: हाँ तो रेसो में बाटी हम बाटी तुम
0: नहीं प्रीमा
2: नहीं वो खताल माल प्रीमा
0: नहीं देने से खुद मोई मोई उबलाई उस टाइम को होता है बा मफरो तेल में कुछ धल ले कहाँ वो तो वो
2: हमें खाली घर में जनेफर ढलनी मांगते लाग
0: हाँ बड़ा स्वाइफर रहा मैं यूसुफ ना मांगे हैं यूसुफ छटकुन लेके बैठा लिया
2: दारू तुलम सुनील तुलम के अन गरम लगे हैं
0: हाँ
2: पसीना चिवे तो वही जनेफर बड़ा काम आवत है
0: इंद्रदात इंद्रदात हम नो हम इनवा अख्तर हो हम ढलले बाटी
2: हम ढले हम जनेफर हम ना लाश करब
0: ओके मगर होटल में और कुछ नवा हाल?
2: सब नवा हाल तो खलक वही पुराना हाल है,
0: सब पुराने हाल है ना,
2: कुछ कौन सी नवा है शायद युग में
0: वही तो
2: जैसे चले है बोलो इसे ही चले दे
0: बोलो फा गागो।
2: हाँ और एक कुछ फरांदरिंग ना आई सके है वन चाहे जैसे के उल्टी है ये कौन सी सेल्फ तोखते ही खा
0: प्रसीस नहीं दरस
2: जॉन बट करबट लिए तब देखिए अपने आप के
0: या
2: दिस सो मुतो मा फेर्डर
0: दैट इज इंदरदात सो गुड दैट क्लॉप्स
2: या
0: मो फ्रोटेल मा बताओ मैं तुम्हारे लिए कितने वे फनाफंड ब्लेम आका बताओ
2: एक है आकाश पे बैठा हुआ

तेरे सुर और मेरे गीत लताजी की आवाज़ में आपको सुनाया गया। ये रात्रि का वक्त में गीत गजल के कार्यक्रम में और पेश करवाने वाली थी इपन मेरे के रहने वाली माशुका सीला जी। अपने माशुक यूसुफ के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए और बहुत बहुत धन्यवाद के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से सीला जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद पेश किया जा रहा है। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है भैया मोहम जी नहीं। चलिए उससे पहले हम आपको ये गीत सुनाने वाले हैं। चलिए ये गीत हम आपको सुनाएंगे इस तरह से।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस बोला था जी, याद रहेगा प्यार का ये रंगीन ज़माना याद रहे, और याद अवश्य रहेगा क्योंकि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो आप चुन रहे हैं और चुन वह कर रहे हैं और सुन रहे हैं, और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने ये गीत पेश की इस तरह से, जबकि आज सौंदा इनंत विंत यूनी है। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं अब भैया मोहम्मद के लिए। भैया मोहम्मद का ये गीत हम लोग प्लेयर में रख चुके हैं, निगती इन फाइव तक का है, दरअसल में वास्तव में फिल्म साबिस्तान का है। बहुत दिनों भैया मोहम्मद, बहुत दिनों बाद मैं भी ये गीत सुनूंगा, ये सच पूछिए तो ये गीत मैं भी भूल गया था। बहरहाल ये शानदार गीत हम आपको सुनाते हैं भैया मोहम्मद के लिए शुभकामना के साथ। और जनाब मोहम्मद ये गीत मांगे हैं सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से भैया मोहम्मद को धन्यवाद देते हुए चलिए आपको हम सुनाते हैं इस तरह से।

वाह क्या बात है। देखते हैं गीता रॉय जी और तलत महमूद साहब के साथ ये द्वैत निकलती है इन फाइव तक का फिल्म साबिस्तान में से निकाल कर हमने चलाए हैं और ये गीत चला देना के रहने वाला जनाब मोहम्मद के लिए, जनाब मोहम्मद के लिए शुभकामना के साथ ये गीत हमने पेश की। और भैया मोहम्मद ये गीत मांगे हैं सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के लिए शुभकामना के साथ पेश किया गया। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से भैया मोहम्मद को भी बहुत बहुत धन्यवाद पेश किया जा रहा है। चले देखते हैं। ओके अच्छा चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से।

0: दर्पण को देखा मैंने जब जब किया सिंगार, मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म उपासना में से निकाले हैं और ये गीत हमने पेश की वो फाउन हिंदुस्तानी और राधिया। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है। फाउन हिंदुस्तानी राधिया, खुदरावंत
1: खुदरावंत है
0: भैया चांद, नमस्कार, कैसे समाचार है खुदरावंत?
1: चलो धीरे धीरे भाई।
0: तब मोई सब कुछ मोई, किसला कैसे है?
1: हाँ, सब मोई अच्छे भाई,
0: सब परिवार मोई।
1: हाँ, परिवार। हम गनवा देली भी बुलाई गली, कौन गाना देली?
0: ओ यो उस कौन गाना भैया चांद बोली से?
2: आंखों आंखों में।
1: ओ हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, देर कैसे रहा तुम बोली इच्छा
0: आंखों आंखों में, हम तुम या आंखों आंखों में, बात होने दो, बड़ा आंखों बड़ा आंखों
1: या
0: आंखों आंखों
1: में
0: हम तुम ना,
1: आंखों आंखों में दो दीवाना है शोई का
0: यो उस
2: फिल्म महल के गाना है।
0: फिल्म महल ओके।
1: हाँ फिल्म महल के
0: रीखल रीखल। हाँ भैया चार और कुछ नवा हाल धक कुछ धल्ले हैं?
1: हाँ धल्ली बाटी भाई,
0: हम लोग बड़ा बेचैनी से इंतजार करीला।
1: अच्छा, जब से आँखों हो गया तुमसे छर से धरती पर, जब से आँखों हो गया कदम कदम पर मचल रहा है प्यार से धरती पर, जब से आंखों हो गया।
0: वाह क्या बात है।
1: हाँ।
0: और दूसरा वाला है?
1: हाँ, है।
0: अच्छा तो वो डाल दे इन
1: मार। देखिए तो
0: मिला तो ठीक है, ना मिले तो जोगाई के धल्ले रहिए को आप।
1: ना ना है है ढेर निकली बाटे।
0: ओ मोई मोई बोल ब्रूर।
1: मैं गुनाहगार जो चले साजन साजा मुझे, मैं सपने में तुझे छेद दिया, उम्र भर कैट ये मोहब्बत से सजा दे दे तुमको, प्यार से जीना गिरफ्तार किया।
0: हाँ वाह क्या बात है, शाबाश।
1: दिल मेरा उसके दुआ देते हैं।
0: हाँ।
1: हमने देखा ये अजब दीवाना।
0: हाँ।
1: ऐसे बहुत बड़का मोई छोटे
0: नहीं, बहुत मोई शाबाश।
1: ऐसे ये वाले तने ना अब द पास की खड़ी बाती तो
0: बेहद कोई बात ना है नहीं खुद।
1: अच्छा भाई,
0: हाँ
1: बहुत धन्यवाद। अब एक सौ फैनाइटिंग
0: या दंग के वेल भैया चांद।
1: अच्छा भाई, अच्छा राम राम
0: फैना आफ तन ही फील लॉस इन प्लेसिर
1: एंड या दंग के भाई, अच्छा राम राम,
0: जय सिया राम। ये था श्रीमान चंद्रघुनाथ अल्फनांदर रेन के रहने वाला। चलिए घड़ी पे अगर देखूं तो यहाँ तो चिल लीजिए, हम आपको ये गीत सुनाते हैं। इस तरह से आ रहा है रफ़ी साहब की आवाज़ में, चलो ये गीत हम आपको सुनाते हैं।

रफ़ी साहब आपको सुनाई है फिल्म शहनाई में से निकाल कर हमने पेश की ये गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो निकती फिर से का ये गीत हमने चलाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है तेलमा जी के लिए। तेलमा जी बस आप इत्मीनान से बैठ जाइए और मांगी हुई गीत से आप लुत्फ़ उठाइए और दना के रहने वाले तेलमा जी के लिए शुभकामना के साथ ये शानदार गीत हम पेश कर रहे हैं फिल्म तकदीर में से निकाल कर। इस तरह से गीत और गज़ल के कार्यक्रम में शुभकामना के साथ तेलमा जी के लिए इस तरह से आ रहा है, सुनते हैं।

आकाश पे बैठा हुआ है, लिखता है वो तकदीर, फिल्म तकदीर में से निकाले हैं। और ये टाइटल सॉन्ग रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने पेश की हो फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो आज सौंदा जूनी के दिन गीत गज़ल के कार्यक्रम में। और ये गीत के मांगने वाली थी दनहा के रहने वाले तेलमा जी के लिए ये पेश किया गया। तेलमा जी उम्मीद गीत आपको अवश्य पसंद आया होगा। और ये गीत तेलमा जी ने मांगे हैं सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए और साथ ही साथ जितने पिता हैं अल फादर फादर दा के उपलक्ष पर, पितृ दिवस के उपलक्ष पर हार्दिक बधाई शुभकामना पेश किया जा रहा है तेलमा जी के जरिए। और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से भी सभी फादर्स को पितृ दिवस के यानी फादर दा के उपलक्ष पर तेलमा जी ये गीत मांगे हैं। तेलमा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं वो ये है, चलो सुनते हैं।

0: पूजा करूं, सजदा करूं जैसे चाहूं। और ये गीत चला पावन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गजल के कार्यक्रम में पेश किया गया पावन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा बप्पी लहरी के साज पर। बप्पी लहरी खुद फिल्म सत्यमेव जयते में से निकाले हैं। अच्छा, देखते हैं लाइन पर कोई है। पावन हिंदुस्तानी रेडियो खुदनावंत खुदनाफ़ मुखरा बेया कैसे रहिले है?
1: चले है गिरत फिरत।
0: तू जाग गई ले?
1: फुटबॉल बैग के ताकिला से अमास पानंद
0: कोई ओ हम तो सोची सूद गई ले ये रात के जागे खाते।
1: नहीं नहीं दी दी है जो एकदम लाती वाला है दी हालत नहीं हम खा पकड़े लगे ला बहुत थक गए ला
0: हम रतिया मांगत रही फिर से ताके ला से ये लास्ट हाल फिर मर थी मैं नहीं खोले
1: नहीं नहीं
0: एक बार दी लाती की जगली
1: या चाहे दिन के इन हाल के लिए पार ऊर्जा मत तो ब्लाइफ ये मुंह वन ऑफ ले खाने से इन ट्वेंटक में
0: नहीं प्रसिद्ध
1: नहीं दस दस लोग नहीं दस लोग नहीं एक वाल हम तकले हैं इस बेर तलर ना एकदम सबेर ना रहा वेलकल वेलकल वास दिवस
0: तो थाले फिर खलो फिर क्या तो थाले फिर वास दर
1: हाँ हाँ तो वाल वाल ताके
0: तो वही वाल तो मांगत रही ताके मैंने कह दिया वाकर हम तीनों फिर फिर नहीं एक दाख नहीं
1: दाउ
0: फिक हन फरहाल नीत मेर त खान होर हम ना बस खोवेंग
1: माखो
0: मैं कैसे रही ले तू बता
1: या खतराल खतराल या अबेचे तो वारम एकाने तेख दी हेत
0: और तू सुरनाम से आई ले कैसे भाई
1: सुरनाम से आई ली मजाने ठंडवाना सीख ले ली है एक बार नेक्स्ट इंद्रियन सेल्फ तफकोम तम तो आई ली तो ठंडा रहा ठंडा देश में हम आई ली तम देहिया में सब ठंडवे घुस गए रहा इंद्रियन सेल्फ तब
0: वही कदिन जब फेफे से इवन तक नहीं आई तो ठंडा ना रहा
1: सब ठंडा ना रहा प्रसीस और जब हम आई ली लाश पहनो और तो गोर सब तो लाश और सब ऐस में घुस जाता रहा सो हो वस नेवतून वही तो हमारे देहिया सब ठंडा हो गए अंदर हम कहने की देख दी है तो मेर सुरिनाम हम खाली एक के दफे गए ली ना नहीं खुद इंद्रियन सिर्फ तो बैनक मारे एन के ना सुरिनाम खान उगरम से हम बोली भागो अपन देश तो वारम एक कौन नहीं फदरा है तो वारम
0: ऐसे तो बरखा बरसे हमने निकल बरखा की ना साधे वाल
1: ना बोल एक हो हम हो पकड़ी लाइक कभी स्टॉप हुई
0: चिकनगुनिया और जोर भागी तो
1: हाँ अच्छा स्त्री स्त्री स्त्री जो सांप और धावरे हैं दूर
0: तो छोड़ के
1: और छोड़ के
0: माहूद बेया
1: या
0: बताओ कुछ कुछ धल्ले हैं दारू पानी ना ही गीत गजल
1: या ना एक हम बस खदान उपाद देंगे ना
0: पहले गनवा दे दे खेपे दत्ती दे
1: एक हमें तो मॉब बखेना
0: या ओके या तुम्हारे
1: एक फिर दी मॉब सो खराब दी मॉब हाथ ओवर ना ऊपर ना मुर्गी मुर्गी किप किप मुर्गी हाँ एक आदमी पूछे है मुर्गी मुर्गी से कि तुलों के कहाई के नाम ना हैं तब मुर्गी बोले हैं तब तुलक हम लोग के नाम मिले हैं मना दो दोत
0: तब यहाँ जाते स्वेल बार
1: ना दो दोत तब तब पूछे कैसे ना दो दोत नाम मिले हैं
0: तो बड़ा नाम रहे हैं
1: हाँ
0: चिकन डेट चिकन दाद चिकन सोक
1: चिकन बिरयानी हाँ चिकन डेट चिकन
0: अरे बड़ा चिकन है नहीं दस लोग तीन दर्द है
1: एक तो लोई हमें इतना लोई के लगा सुने मुर्गी वो मुर्गी बैठ के खड़ा होकर बतावे कि को नाम मरे के मर
0: मरे के बाद मिले हैं तीन है दस मोई
1: बस इस पर स्केल है बस वह सब मौत
0: अब बताओ और आगे
1: अब बताइए ओके ना इस क्या को हो ना ओ या जिस जिस उसको कुछ बेचे खराब होता है बेचे मोब आता जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल मोबाइल मोबाइल होता और जिसका मोबाइल होता वो फिर भी किसी का नहीं होता या तो एन सत ओ में जो खराब हो गई सर अन पहले लोग सोते थे तो शरीर को आराम मिलता था अब सोते हैं तो मोबाइल को आराम मिलता है इस पर सब लेट है
0: ऐसे सो मने
1: लोग मोबाइल लेके सोते हैं
0: हाँ प्रसिद्ध
1: ओ ओ ho. En mobiel moet je toch niet dichtbij in je kamer, hè. Hij moet toch op een afstand.
0: Ja, ja, ja.
1: Toch?
0: Nee, dat
1: maar
0: dat
1: hij daar rekenen.
0: Het is verschillend. Het is verschillend.
1: Ja. Nee, maar ze zeggen, je moet mobiel nooit dichtbij als je slaapt, toch?
0: Je moet het niet meer rijden, pyjama maar rijden, tas meer rijden.
1: Nee, als je slaapt bedoel ik.
0: Oké.
1: Ha, raad je je soetje, mobiel op afstand zetten, niet naast je bed of op je bed.
0: Ja, ja.
1: Straling, nee, de of koontje, dat zeggen ze toch?
0: Nee, dat is inderdaad zo.
1: Ja, ja. Even kijken, ik heb nog eentje.
0: Aha.
1: Kisine, satje hi kahahe. Disne, disne, dit is ook een beetje grappig. Disne, jalbazi ne, shadi kia hai. Usne, even kijken, usne, jalbazi ne, shadi kia hai. Apna jeevan bigaar liya. Dus jisne jalbazi ne, shadi kia hai, usne, apna jeevan bigaar liya. और जिसने सोच समझ कर किया उसने क्या उखाड़ लिया. Ik vind zo grappig deze dingen.
0: Nee, het is inderdaad mooi.
1: Het is leuk om dat in, ja, te lezen.
0: Ja, nee, mooi. Heel mooi, dankjewel. Acha, ben jij betaal op kon gaan aan
1: mijn nog één laatste.
0: Oh ja, go ahead. Ja, ja.
1: Mij toor leta agar tu gulaab hoti. मैं तोर लेता अगर तू गुलाब होती. मैं जवाब बनता अगर तू सवाल होती. सब जानते मैं नशा नहीं करता. मगर मैं फिर पी लेता अगर तू शराब होती.
0: मोई एल मोई बड़ा कुछ कुछ धर ले तू मोई
1: प्राप्त.
0: Okay. Ben jij aan betaald? Koen gaan naar Maandrelle.
1: Mijn liedje is van Mukeer. Volgens mij is een duet. Tumse hi meri zindagi, meri bahar ho tum. Apne hi dil se pooch le.
0: Tumse hi meri zindagi.
2: Kuch
0: aur bahar ho tum regel.
1: En wat ik wou zeggen, oh ja, groeten aan Shama. Shama is mijn vriendin al heel lang. En
0: toen jij zei Shama, die oude nog.
1: En ook Thelma.
0: Oh, Shama, ja, Thelma.
1: Ik ben iemand, hem kooi ze rista door Leila. En

0: अगर तुम कलंकी नहीं तो ये कलंक सर आंखों पर।
1: नहीं नहीं राजू, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
0: कल तक सोचना पाप था लेकिन आज और बात है। कल तक कहना पाप था लेकिन आज और बात है। रोजी, मैं तुम्हारे लिए सपने देखना चाहता हूँ, उन सपनों को रूप देना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दो।
1: मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, कोई वादा नहीं कर सकती। मुझे उलझन में मत डालो राजू, मेरी परिचय तुम्हें कहीं बर्बाद न कर दे।
0: ठंडे मन से एक बात सुनोगी, तुम कोई वादा नहीं कर रही हो। तुम्हारा हाथ अपने दिल पर रखकर मैं एक वादा करना चाहता हूँ।

एल्बम गाइड में से निकाले निकती 65 उन्नीस सौ 65 का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में एस दे बर्मन के साज पर यानी सचिन देव बर्मन के साज पर हम फिल्म गाइड में से निकाले हैं और पेश किया गया फ़ोन हिंदुस्तानी रेडियो के रात के कार्यक्रम में गीत गज़ल के कार्यक्रम में। और गीत को चलवाने वाला था, मांगने वाला था मेरे सामने बैठा हुआ भैया यूसुफ, भैया यूसुफ यानी माशुक यूसुफ अपने माशुका के लिए जी अपन बेरुख में बैठी हुई है शीला जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए। शीला जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और भैया यूसुफ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं वो है अल्फानंद रहीन, अल्फानंद रहीन के रहने वाला श्रीमान चांद रघुनाथ अपनी प्यारी धर्मपत्नी शीला के लिए, भैया चांद के लिए खिसला जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए। और पर रंदरैन के रहने वाला गाना कहाँ गाया भाई, हाँ ये है ये है बटम भैया चांद रघुनाथ और खिसला जी के लिए शुभकामना के साथ।

आंखों आंखों में एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी, ये दोनों मिलकर आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि देखते हैं अल्फन ऑन द रेन, अल्फन ऑन द रेन के रहने वाला श्रीमान चांद्र गुनाथ ये गीत मांगे हैं और खिसला जी के लिए, खिसला जी चांद्र गुनाथ के लिए शुभकामना के साथ, और दोनों के लिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा ये गीत चलाया गया। भैया चांद्र गुनाथ और खिसला जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमने प्लेयर में रखे एक अनाउंसर चॉइस, क्या ख्याल है? चलो सुनते हैं ये गीत फिल्म लव मैरिज में से निकाल कर, निकित निक नफे तो शंकर जय किशन के साज पर यह गीत।

तुमसे ही मेरी जिंदगी मेरी बहार तुम। और ये गीत आपने सुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, और पेश करवाने वाली थी बेया गजराज जी, दरहा के रहने वाली बेया जी। शुभकामना के साथ ये गीत आपके नाम पर हम लोग ने रखे हैं, उम्मीद है आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। बेया गजराज दनहा। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं बेया उतरेख। बेया रहने वाली उतरेख के हैं, और बेया जी आपकी मांगी हुई गीत हमने प्लेयर में रखे हैं। शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए बेया जी के लिए उतरेख, इस तरह से बेया जी।

फिल्म माँ बाप में से निकाले हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में, और ये गीत पेश करवाने वाली थी उत्तराखंड के रहने वाली बेया जी। बेया जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना के साथ ये गीत हम लोगों ने पेश की बेया जी के लिए उत्तराखंड के रहने वाली। चलिए आखिरी गीत बचा है और वो है सुस्त, सुस्त के रहने वाली आशा जी। आशा जी के लिए शुभकामना के साथ ये प्यारा गीत हम चला रहे हैं फिल्म ज़मीन आसमान से निकालकर, और ये गीत आशा जी मांगे हैं अपने पति श्रीमान करण के लिए। तो लीजिए आशा की तरफ से करण के लिए, पति करण के लिए शुभकामना के साथ चलिए ये गीत हम चला रहे हैं आशा जी के लिए सुस्त के रहने वाली है।

0: लता की आवाज़ में ये गीत पेश हुआ फ़ान हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गज़ल के कार्यक्रम में हमने पेश किए शुभकामना के साथ। और देखते हैं शुभकामना के साथ पेश किया गया सुस्त के रहने वाली आशा जी के लिए आशा जी की तरफ से उनके प्यारा पति श्रीमान करण के लिए, आशा जी की तरफ से करण के लिए शुभकामना के साथ शुभ रात्रि पेश करते हुए और आशा जी आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए, आपको वेलकम कहते हुए फ़ान हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा बहुत बहुत शुक्रिया और आप दोनों को भी एक शुभ रात्रि। यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश किए। भैया यूसुफ अपनी आवाज़ सुना दीजिए और सभी को धन्यवाद दीजिए।
1: Ik wil al die mensen bedanken die vanavond hebben gebeld. Dat is mevrouw Sila uit Ippenburg, de heer Mohamed uit Den Haag, mevrouw Telma uit Den Haag, de heer Jozef uit Ippenburg, de heer Tjan Ragunat uit Alfa aan de Rijn, mevrouw Bea Gedraat uit Den Haag, mevrouw Bea uit Utrecht en mevrouw Asha uit Soes. Dat waren de bellers voor vanavond. Hartelijk, hartelijk bedankt. Tot volgende week.
0: Hey Joost, dankjewel dat je wederom mij hebt geholpen. Ik wens je fijne vakantie een weekje en volgende week zondag zie ik jou weer.
1: Ja, dankjewel.
0: Acha, hey Joost, dankjewel. तो ये कार्यक्रम हमने पेश किया भैया यूसुफ के साथ। भैया यूसुफ की भी बहुत बहुत धन्यवाद और भैया यूसुफ सभी को धन्यवाद दे चुका है। मैं अपने तरफ से सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ और जो लोग शायद कोशिश किए होंगे तार करने को और लाइन पर नहीं आ सके हम क्षमा चाहते हैं और मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे बाद आप सुनेंगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़ और न्यूज़ के बाद बाकी के कार्यक्रम हमारे सभी सहयोगी मिल के आपको सुनाएगा।

कभी तन्हाइयों में भी हमारी याद आएगी। यहाँ तक था ये कार्यक्रम मैंने पेश की। सभी को धन्यवाद देते हुए शुभकामना के साथ आप लोगों ने तार की और आप सबको एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है। मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला दोंद्रदाख, आने वाला दोंद्रदाख को 12 बजे दिन से 3 बजे शाम तक हम आपके कार्यक्रम में पेश रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आप सबको एक शुभ रात्रि और फादर दाख के बहुत बहुत शुभकामना फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और हमारा प्रोग्राम चलाना है, हमारा काम यही है, हमारा मोहब्बत भरी पैगाम। यहां से कुछ पुराने नगमे, कुछ नए गाने से आज हम आप लोग को और सुनाएंगे। हम चलते तुरंत इधर चला मैं उधर चला, फिल्म के नाम है कोई मिल गया। ऋतिक रोशन प्रीति सिन्हा इस फिल्म में काम किया है, इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों क्या किया और क्या किया, आज हम आप लोग को कुछ नया और पुराने गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा एक गीत है जो नैतिल के लता जी और उदित नारायण को गाया हुआ गीत है। इस फिल्म का नाम है वीर जरा, शाहरुख खान और प्रीति सिंधा का ये गीत आप लोग सुना जाए।

और ऐसा देश है तेरा। जितने लोग दुनिया पे है हमारे प्यारे सुनने वालों, अपना देश सबके प्यारा होता है। चाहे आप भारत में हो या सूरीनाम में हो या पाकिस्तान में हो या जहां भी हो, अपना देश सबका प्यारा है। चाहे वो देश आपका जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा अपना ही देश है। और चलते हैं हम और आगे को, सतो सातो जन्म में तेरा ही रहेगे। फिल्म के नाम है दिल वाला। कुमार शानू और अलका याग्निक इस गीत को गाते हैं।

सुनने वालों, सातों जन्म तक हम तेरे रहेंगे, ये क्या मुमकिन है? सात जन्म तक किसके साथ रहे? एक जन्म में भैया कहीं कहीं उल्टा सीधा हो जाए, सात जन्म में भला क्या होगा? सोचो तो, हम चलते हैं एक गीत की ओर। औ है खलनायक, खलनायक की ओर, और पलकी में होगे सवार, पलकी में होगे सवार। आओ सुना जाए।

बस पालकी में होके और सवार चलिए। कल का यानी फिल्म का नाम है खलनायक, जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित संजय दत्त ने काम किया है और गीत को गाया है अलका याग्निक। और हमारे प्यारे सुनने वालों, हमारे दोस्तों, यहाँ से प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हम चलाते हैं। अगर जो आप किसी के ऊपर दीवाना हो गया है, अगर जो किसी के ऊपर आप दीवाना या दीवाना हो गया है, दिल दे चुका है, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। आओ देखो क्या है।

और ऐसी दीवाननी और एक तेरा नाम हमने लिख दिया अलका याग्निक और विनोद राठौड़ ऋषि कपूर देविया भारती का ये फिल्म है ऐसा दीवानी फिल्म का नाम है दीवाना। और हमारे प्यारे सुनने वालों आज हम आज कुमार शानू के गीत भी आप लोग को सुनाएंगे और वो है ये चांद कोई दीवाना है, ये चांद कोई दीवाना है, ये भी कुमार शानू और अलका ने इस गीत को गाया है।

चांद कोई दीवाना है और ये चांद कोई दीवाना है। छुपा रुस्तम फिल्म का नाम है और इस गीत को हमने अपने प्यारे लोगों के लिए चला दिया है। मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को फिर कुछ मनोरंजन को आप प्राप्त करेंगे। और हम चलते हैं, कोई पागल प्रेमी होता है भैया, कोई श्रेक होता है और कोई पागल होता है। कविता कृष्णमूर्ति का और सबीर कुमार का यह गीत है जिस फिल्म में गोविंदा ने काम किया है और देविया भारती ने। और इस गीत को बोल है तू पागल प्रेमी और आवारा।

दोस्तों, और ये गीत क्या होगा दोस्तों? ये कुछ प्यार भरी गीत है, और ये गीत है झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल। झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल की ओर हम जाते हैं।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और ओल्ड इन गोल्ड जो गीत होता है उसमें स्वाद बहुत ज्यादा है। हम चलते हैं एक गीत के ओर जिस फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन सिनेमन का एक सुपरहिट फिल्म है जो आप इस गीत को जानते होंगे दोस्तों।

और दो लफ्जों की है ये कहानी। मूवी के नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन ने तमन इस फिल्म में काम किया है। गीत को गाया है आशा भोसले दोस्तों। और ये ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग आपको जरूर अच्छा लगेगा। आओ सुना जाए ये क्या है।

0: सुना दी। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देख।

0: ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: नौ बरस लंबी थी ना।

और तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं दोस्तों, ओल्ड इन गोल्ड का प्रोग्राम यहां से हम चलाते हैं हमारे, तो यहां पर क्या है आओ सुना जाए ओल्ड एज गोल्ड का ये सॉन्ग और पुराने गीतों की बहार प्रोग्राम है।

जन्म ओल्ड एंड गोल्ड कांजोंग हम आपको सुनाते हैं हमारे यारों हमारे दोस्तों। और एक और हो जाए ये बहुत पुराना गीत है कि अखियों का नूर है तू जोहर एंड महमूद इन गोवा अथवा से सुपर हिट फिल्म में से। और ये गीत आपको हम सुनाते हैं रेडियो फाहौर के माध्यम से और यहां से सुनाते हैं।

0: ये गीत थी एक बहुत मशहूर गीत है, आओ सुना जाए ये क्या है।
1: बेकरार
0: महेंद्र कपूर
1: न जाए।
0: नहीं दोस्तों,
1: आपको हमारी पसंद लौट
0: हेमंत कुमार।

और ये रातें, ये मौसम, और क्या क्या होता है दोस्तों, और पुराने गीतों के भाड़ सॉन्ग, हम चलते हैं झूमता मौसम, मस्त महीना। और नतिगिल लता जी और परमाश्री मनाली का ये सॉन्ग है।

और झूमता मौसम मस्त महीना नैतिकी लता और परमा श्री मनाली का ये जोंग आपको हम चलाए हम चाहते हैं माइती मुकेश की ओर की जो

और मेरा दिल ये पुकारे आजा ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग, और कभी कभी होते हैं सर पे टोपी और वेल का क्लियर दुपट्टा। आओ सुना जाए।

और तस्वीर से भी और निकर के सामने आ, और कौन आएंगे, महबूबा ही आएंगे हमारे यारो। तो प्यार भरी सॉन्ग है, क्या दिल ने कहा है।

दिल ने कहा आओ क्या मैंने सुना लवली सॉन्ग हम आप लोग को आज सुनाएंगे दोस्तों तेरे नाम लिया और क्या किया क्या किया तेरा नाम लिया और क्या किया सुना जाए।

तू पूछना तो पड़ेगा कि तुम इतने दिन कहाँ थे, कितने दिन कहाँ थे, तो वो कहेंगे कि इतने दिन जहाँ भी थे लेकिन तुझे याद तो हमने किया है। तो अगला प्यार भरी गीत कौन है, क्या है, तो ये कहते हैं कि जब आप कहीं हो और किस उसको कुछ दिन नहीं देखा है तो लगता है कि तुझे हमने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है पता नहीं चलता है। तो अजनबी आपको बताएंगे कि कहाँ तुझे देखा है।

ये अजनबी, अगर ये अजनबी आप हो तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। अजनबी को बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तो अगला गीत की ओर हम बढ़ते हैं। आम सभी को यानी कि शादीशुदा लोग के बारे में आपको हम इस गीत को सुनाते हैं। मौफी का नाम है सौतन। सौतन ने खतीन्द्रियन तख्त का ये फिल्म है दोस्तों, और ये मौफी है। इसमें एक सुपर हिट सॉन्ग इसमें गाया है कि जोर दादा ने, आओ सुना जाए। पहले भैया सुरीनाम में लोग जानते थे तो लड़की देखने को तो आते थे कोला, और इस गीत में क्या आते हैं, आओ सुना जाए।

नीम का ये सॉन्ग है, मोफी के नाम है साउथन दोस्तों, साउथ इंडिया साउथन मोफी के नाम है। इसके बाद हम और आगे को चलते हैं, रोमांटिक सॉन्ग, एक और रोमांटिक सॉन्ग हो जाए आज अलका का, अलका याग्निक और द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार कुमार शानू की ओर हम चलते हैं। कौन सा सॉन्ग है दोस्तों, कौन सा सॉन्ग है, नवीन सरवन का म्यूजिक है।

आशियाना, और उसके बाद हम चलते हैं। कभी कभी लोग को पूछना पड़ता है और कहते हैं एक बैन खेन अख्तिनवेर, लोग बोलते हैं एक बैन खेन अख्तिनवेर, और एकवा बोले है एक वर्थ अख्तीन। तो ये गीत 18 बरिस से के उम्र का गीत है दोस्तों, एक सुपरहिट सुपरहिट फिल्म सुहाग का है, जो नहीं खती होंद नहीं हनन जीवन तख में, और ये मूवी हलचल मचाए थे।

कि उम्र हो गया है तो कोई जतन करना चाहिए, और जतन के बाद हम चलते हैं, क्या आपकी जो आंखें है वो भी काली है, काली है या गोरी है या ब्लू है या लाल है, ये सवाल हम नहीं करता है, करते हैं लवाजी कर करते हैं।

दोस्तों इस गीत का है देखा है पहली बार और मूवी के नाम है जांजन अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम का रोमांटिक सॉन्ग।

और मूवी के नाम है साजन, और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

और दर्दे करने को ये सॉन्ग दे। और हम चलते ही दोस्तों, आप लोग जानते ही यार निघंत का सोन, और वो कुछ और थे और ओल्ड इन गोल्ड और कुछ है दोस्तों। और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है, लेकिन हम चलते हैं यार निघंत का जोंग, और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे। मोफिक राम है जाजन।

प्यार करते हैं, तुझको जन्म तार आया है लेवाड़ से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और है मैं दी मुकेश का ये सॉन्ग है।

बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 डेज का ये मूवी सॉन्ग है जो आम सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको हम सुनाएंगे। मुकेश एवरग्रीन्स मेलोडी सॉन्ग है, ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे। और गीत है इस फिल्म में दोस्तों, लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

जस्तक का ये फिल्म है और गुरुदत्त और आशा परेख ने इस मूवी में सुपरहिट फॉलो फिल्म है जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए दोस्तों।

0: की खैर तेरे बालों की खैर क्यों ना जुल्मी ओ जालिम ले जाना होते।
1: यस दोस्तों, तो ये कुछ बीच बीच में कभी कभी अच्छे अच्छे गीत सुनाने के मूड में हम हो जाते हैं, और जब गीत सुनाते हैं तो कभी कभी दिल भी रो देते हैं हमारे दोस्तों।

तारीफ करते हैं गुरुदत्त और आशा पारेख ने। भरोसा मूवी के नाम है निकटी द्री एंसेस्टर का पद्माश श्री मोहम्मद रफी का ये गया हुआ जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला अगला अगला अगला जोंग की ओर।

तो इस मूवी में और फिल्म के नाम है अंदाज नेखती नौ नेखनो फिर तक का ये सॉन्ग है जिसमें दिलीप कुमार ने काम किए हैं और राजेंद्र कुमार ने काम किए हैं नौशाद के साथ में हम चलते हैं एक और सॉन्ग आशा भोसले मधुबाला अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं हावड़ा ब्रिज

मूवी के नाम थी हावड़ा ब्रिज। एक और अगला सॉन्ग किम जते दूर कोई गाए धुनिए।

और दूर कोई गाए धुनिए सुनाए और मेरे मन और क्या क्या है दोस्तों, ओल्ड एंड गोल का ये सॉन्ग है और ये है मूवी मूवी मूवी के नाम क्या है मेरे ख्याल से भाई भाई गीता दत्त इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुनाइए कौन से नंबर ये है।

तुझे बता दे तू भी किस पे आ गया है। गीता दत्त का ये सॉन्ग थे हमारे दोस्तों। और तो इस मूवी का नाम है नागिन। बहुत लोग देखकर इस फिल्म को पसंद किया है। और परमाशी मोहम्मद रफी और रफी का ये यानी कि आशा जी का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर सुना जाए।

होगा। मूवी के नाम थे नागिन का ये सॉन्ग, सुपर हिट्स फिल्म थी हमारी दोस्तों। ये भी एक जिपर जिपर एंड जिबर सॉन्ग थे पद्माशी रफी के बाद में हम आते हैं नाइटिंगेल लता जी और तलत महमूद का। ये बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग है, निखती होंद शस्त्र का ये गीत है और सुना जाए।